0: सोमवार 12 अक्टूबर की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: आप कहीं भी छुप जाए मैं तो आपको पकड़ लूंगी भाई, क्योंकि ये जो गाने हैं आप तक पहुंच ही जाते हैं। 5:05, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी, नवरात्रि के आप सभी को मंगल कामनाएं। बस नीतू आपके साथ सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: तो प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इट्स योर मंडे मॉर्निंग और 12 अक्टूबर की तारीख और नवरात्रि तो शुरू हो ही गई है। सभी भक्तों को माता का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो यही कामना करती है। वट एवर यू माइट बी, आपके मैसेजेस नंबर अभी तक वही है, हाँ 7999 2994 पर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। वट एवर यू माइट बी, स्टे वेल ट्यून्ड। आपके ये जो मंडे मॉर्निंग है उसकी शुरुआत बस गुड वाइब्स के साथ हो जाए यही कामना करते हैं। बोकोहाज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क।

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: माँ तो माँ होती है, माँ का आशीर्वाद आप सब पर रहे। एंड आपके लिए है आज भाई सूरज शर्मा सजादा एंड फैमिलीज, नमस्कार जी। नेक्स्ट गाना गुजार टू हुम, यहाँ पर आपके लिए पूरे परिवार के नाम इस सजेशन। एंड हरदया परिवार विशिंग ऑल पायस दुर्गा पूजा। और आपके नाम सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वशी, ब्लेसिंग सेंड टू रेडियो मस्ती टीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मिस्टर दीपक एंड फैमिली। आपके नाम ज्योति शातु बिनागस से आशनी, रेखा, सुरेखा एंड माधव परिवार के लिए भी।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे बस अपने कर्म को लेकर जाएंगे भाई सो डू गुड बी गुड अ वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार आपको टोनी जी यहाँ पर आपके पूरे परिवार के नाम जय माता दी आपको ग्रीष्मा फ्लाग से हिमाक्षी कुष्मिता लव ना बीरमती टू रेडियो मास्टी टीम बहुत धन्यवाद शुभ नवरात्रि आपको भी अंजनी जी यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग आपको अब्दुल सैना बानु साथ निभाते हुए एंड बस छुगा लाल परिवार मेलविल से लता जी एंड किशोर कुमार की आवाज़ों में बस प्यार और गीतों की इन हसीन वादियों में आपने भी ख्वाब देखे हैं बस अपने ख्वाबों को अपने सपनों को अब उड़ान दीजिए सुबह का टाइम है 5:25

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: कैसे है प्यारी सी दूती का रघु जना परिवार, जय माता दी आप सभी को। यहाँ पर प्रणाम जी, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू मामा सावित्री ऑफ मेलविल, और आप हो आरती कॉटेज से उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही है, तो पूरे परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, दुख सुख के साथ साथ यहाँ पर इन गानों का भी मजा ले रही है ऑन 5499 1294। लता जी, किशोर कुमार की आवाजों में ये है त्रिशूल फिल्म का सदाबहार गाना। थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपका दिन एकदम कमाल से धमाल हो जाए. सबसे पहले शुरुआत आपके साथ
2: एरीज मेष राशि.
1: वल आज का दिन आपके लिए समृद्धि, उत्साह और नई उम्मीदें लेकर आया है. जिम्मेदारियां कुछ बढ़ी हुई है और आपका आत्मविश्वास हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है. किसी नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है और आगे चलकर यही कदम लाभ का कारण भी बन सकता है.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आपकी मेहनत को पहचान और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. समाज में आपके अच्छे कार्य की चर्चा होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. अनुभव और समझदारी के कारण आप कई कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालेंगे. छोटी यात्रा का योग बन सकता है और सफर केवल घूमने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि किसी लाभदायक अवसर का रास्ता भी खोल सकता है.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: वल आज आपको अपनी आय और खर्च के बीच बेहतर संतुलन बनाने की जरूरत है. आर्थिक मामलों को व्यवस्थित रखेंगे तो होगा क्या, मन भी शांत रहेगा और परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बनी रहेंगी. यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें प्लीज.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज का दिन आपको सफलता के साथ सावधानी का भी संदेश दे रहा है. कार्यक्षेत्र में कई उपलब्धि मिलने की संभावना है लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी रहेगी. धन कमाने के मामले में सही और स्पष्ट रास्ता अपनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. कोई ऐसा काम जो लगभग पूरा हो चुका था अचानक अटक सकता है लेकिन घबराने की बजाय धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति संभल ही जाएगी.
2: लियो सिंह राशि.
1: ऑलराइट, आज धैर्य और समझदारी आपके सबसे मजबूत हथियार हो रहेंगे. परिवार में छोटी मोटी परेशानियां मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को संभाल लेंगे. किसी को कोई वादा करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लें. अधूरे कामों को टालते रहना आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. तो आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखें, खासकर किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज आपको हर कदम सोच समझकर उठाने की सलाह है. जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम आगे बढ़ सकता है और इससे राहत भी मिलेगी. हालांकि कुछ काम आखिरी समय पर रुक सकते हैं. दैट्स व्हाई धैर्य बनाए रखना बहुत ही जरूरी है.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज योजनाबद्ध तरीके से किया गया आपका हर प्रयास सफलता की ओर बढ़ेगा. रियल इस्टेट और संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए समय काफी लाभकारी है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके साहस के साथ महत्वपूर्ण डिसीजंस भी लिए जाएंगे. सरकारी योजनाओं में किया गया निवेश लाभ दे सकता है लेकिन आर्थिक फैसले जो है सोच समझकर आपको लेने पड़ेंगे. वाहन से जुड़ा कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: वल आज कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने या आपकी राह मुश्किल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपका आत्मविश्वास और समझदारी उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे. लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता में धीरे धीरे राहत मिल सकती है. संतान के भविष्य को लेकर मन में थोड़ी चिंता रहेगी लेकिन जल्द ही सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद है. स्वास्थ्य खासतौर से आंखों का ध्यान रखें.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: आज आपकी वाणी और आपका व्यवहार लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं और नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होगा वरना होगा क्या, बाद में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें और परिवार में प्रेम और आपसी एकता बनी रहेगी.
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
1: आज व्यवहार बल्कि व्यापार और करियर दोनों के लिहाज से अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। आपके काम की सराहना होगी और आपकी पहचान भी मजबूत होगी। हालांकि किसी महत्वपूर्ण डील में आखिरी समय पर अड़चन आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल ना रहे। समय और धन का सही इस्तेमाल आज बहुत ही जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को समझने और परखने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपके हितैषी नहीं है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज का दिन ऊर्जा और उत्साह साथ में उपलब्धियों से भरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा लोगों का ध्यान खींचेंगी और आपके काम की सराहना होगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ बिताए हुए पल आपको लंबे समय तक याद रहेंगे।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: एंड लास्ट, आज खुशियां जो हैं आपके दरवाजे पर दस्तक देती नजर आएंगी। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से हो सकती है और इसके बाद भी सकारात्मक घटनाएं आपका उत्साह बनाए रखेंगी। बच्चों बल्कि पिता की ओर से बड़ों की ओर से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन समय और सम्मान से बात करेंगे तो संयम और सम्मान से बात करेंगे तो स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में छोटी बातों को बेवजह बड़ा बनाने से बचें और आपके रिश्तों में मिठास हो, बस यही कामना करती है। बेस्ट ऑफ लक एंड ए वेरी गुड डे अहेड।

एकदम बढ़िया, वो भी जितने भी लोग तैयार हो रहे हैं शिष्य के सामने अपने आप को सजा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। 5:55 छह बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, जय माता दी। बाबू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, रेखा, निशा, दाविद उस परिवार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी आपको भी। प्रेंदी पापा ऐसे हैं, प्रेमिला जी, पति रंजीत एंड पूरे परिवार, सोनम भोला विशेज, मॉम, आपकी बहने, भाई, राम गुलाम फैमिली, सबको अपायस नवरात्रि। प्रणाम जी, इंदिरा, रेशमा, विमा, लंजू, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया फ्रॉम मोता ब्लॉश एंड थ्वाबुचिक से है ज्योति, गाना आपके दामाद विकास जिनका आज बर्थडे है। सो ससुर जी है दानी, वाइफ विनीता, बेटी है दिया, बहन है पिंकी, सुमन, आई मीन सिस्टर इन लॉज एंड ब्रदर इन लॉ विकास, क्रिस्ट एंड सब परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

0: 6 बजे है। सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नितुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। कॉलेविया में शुक्रवार को गोली चलने की वारदात में के सिलसिले में पुलिस की तरफ से कल जारी किए गए एक कम्युनिके में सूचित किया गया है कि पुलिस सर्जेंट तको को कल 11 अक्टूबर से नौकरी से इंटरडिक्ट किया गया है। इसके साथ ही घटना के वक्त स्थल पर मौजूद और 3 पुरुष पुलिस अफसरों को भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न करने के लिए इंटरडिक्ट किया गया जिसकी जान खतरे में थी। पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से और कानून का पालन करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से जनता से भी मांग की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई जानकारी या तस्वीर साझा करते हुए जिम्मेदारी और सतर्कता बरती जाए। एलोजी तोमा के ऑपरेशन के सिलसिले में आज भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 3 तकनीकी एजेंट भी शामिल होंगे। इस डेलीगेशन का संचालन डॉक्टर राकेश झल्ला द्वारा किया जा रहा है और ये मदद भारत की तरफ से परोपकारी स्तर पर किया जा रहा है। वकील रामा वलायदेन और आसाद पीहू अदालत में तुमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है। हालांकि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर उस पर पोसेशन ऑफ अ फायरआर्म विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की कोशिश के आरोप में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलट जाने और डूबने से कम 139 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस नौका में 305 लोग सवार थे जो जिबूती से यमन की तरफ जा रहे थे। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मास्कारिंस के दक्षिण पश्चिम से एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, ऊंचाइयों पर हल्की छींटे पड़ सकती

0: जाती हैं। और रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादलों का असर खासकर पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर पड़ेगा और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:42 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:10 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें, हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: The biggest matches are waiting for you on NBC Play. Champions League, La Liga, Europa League. Now catch the biggest matches wherever you are, whenever you want with the NBC Play Sports Pack for just 299 rupees per month. And best of all, no commitment and no long-term subscription. Want to watch this month? Get your pack. Want to continue? The choice is yours. Simple, flexible, and take the football wherever you go. NBC Play Sports Pack. The biggest matches are here. For more information, call 402-8000.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:09, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, तो चलिए माँ का प्यारा आशीर्वाद आप सब पर रहे. एंड विशिंग यू ऑल वंस अगेन प्यार भरा नमस्कार प्रणाम. चलिए जी नीतू आपके साथ, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू रीना दागोचिया से हैं आप, आपके पूरे परिवार के नाम मनसुख फैमिली खास आपके लिए आकाश एंड योर डियर वंस. पायलों की छन छन यहाँ पर शुरू हो गई है. बस आपके मैसेजेस भी ऑन 5499 2994. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स चल रही हैं. बस आप मन लगा कर पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका फल डेफिनेटली मीठा ही होगा, है ना?

0: FM2 Radio Musti.
1: You, qui l'antenne t'es bien installée? Forget ça! Alpon de l'abonnement Canal Plus, app only! Zéro l'antenne, zéro décodeur, zéro installation! Abonne-toi, download to app Canal Plus, extreme des suites! EasyNet, Premier League, film, série, Bollywood, Lotus Smart TV, smartphone, tablette, stream pour tout man! En plus, l'immense avec tout réseau internet! Canal Plus, app only, rendez-vous en Canal Plus Store et chez MTEL. Service accessible sur le site internet canalplus.com ou via l'application Canal+. Sous réserve de souscrire à une offre Canal+, soumise à conditions valables à Maurice. Voir conditions techniques d'accès sur canalplus.com.
0: RM2
2: Radio Musti.
3: Shavashkar 21 minutes and let me wish a very good morning sabhi ko. Jai Mata Di Priya Sidham. Pudhudu Village se hai and goes out to all the students jinke exams chal rahi hai. So best of luck specially. Dil ki to koi karib hai hi kyunki aapka message idhar adhura hai. सो आपके सभी डियर वंस के नाम वर्षा माय डियर लक्ष्मण फ्रॉम बेलवी मुगैल और आपकी प्रिंसेस एक साल की हो गई है पर प्यारी सी परी को बेस्ट विशेस पापा विकेश एंड भाई है वायु विहान सभी लक्ष्मण परिवार फ्रॉम बेलवी मुगैल एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से भी ढेर सारा प्यार रेखा आंशन परिवार को जय माता दी

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: साथ साथ चलेंगे ये पक्का वादा रहा. डेडिकेटिंग द सॉन्ग टू यू हस्बैंड प्रकाश, बेटी अनवी, बेटा वीर, और आपके लिए खास तौर से कैथोकोको से प्यारी सी पूजा. कैसे हैं आपके नाम चलाते हैं बदवग विदेशी एनी सॉन्ग कहती है पूरे परिवार के नाम है ये. वाह, 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद मनीषमा के साथ मॉर्निंग बीट.

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। कोलियोवे में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई लोजी, तो मां की हालत अभी भी नाजुक बताई जाती है। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। कोलियोवे के संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। पुलिस की तरफ से जारी कम्युनिके में सूचित किया गया है कि पुलिस सर्जेंटों को सहित तीन और अफसरों को नौकरी से इंटरडिक्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलट जाने से कम 139 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोलियोवे में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलओजी, तो मां की हालत अभी भी नाजुक बताई जाती है। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। वहीं इस मामले में पुलिस के स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। कोलियोवे में शुक्रवार को गोली चलने के कारण पेश आई वारदात के सिलसिले में पुलिस की तरफ से कल जारी एक कम्युनिके में सूचित किया गया कि पुलिस सर्जेंटों को कल 11 अक्टूबर से नौकरी से इंटरडिक्ट किया गया है। इसके साथ ही घटना के वक्त स्थल पर मौजूद और तीन पुरुष पुलिस अफसरों को भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न करने के लिए इंटरडिक्ट किया गया जिसकी जान खतरे में थी। पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से और कानून का पालन करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से जनता से मांग की जाती है कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी या तस्वीर साझा करते हुए जिम्मेदारी और सतर्कता बरती जाए। हम आपको बता रहे थे, एलओजी तोमा के ऑपरेशन के लिए आज भारत के करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश अजाला की निगरानी में ये टीम इस सर्जरी के लिए मॉरिशस आ रही है।

0: उनके आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिज ने कल विक्टोरिया अस्पताल में स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक लगाई ताकि एलोजीटोमा की हालत का जायजा लिया जा सके और इस जटिल ऑपरेशन की योजना बनाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि वे दोनों टीमों के बीच हो रहे सहयोग की खुद सरपरस्ती कर रहे हैं। उधर एलोजी के पति का कहना है कि इस बेहद मुश्किल दौर के बावजूद वे हिम्मत बनाए हुए हैं। उसने उन सभी लोगों का आभार प्रकट किया है जो उसका समर्थन कर रहे हैं। अभ्युदय
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा एक बच्चा है, इसीलिए मुझे खुद अंदर से मजबूत रहना होगा क्योंकि मुझे अपने परिवार का समर्थन करना होगा। एलोजी के लिए मुझे एक हौसला बनना होगा। जितना हो सके मैं अपनी पत्नी के लिए हर संभव कोशिश करूंगा क्योंकि अगर ठीक से देखा जाए हम सब एक कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उनके इलाज को लेकर डॉक्टरों की एक टीम सब कुछ कर रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के आने की भी उम्मीद है, इसीलिए मैं बहुत ही सकारात्मक हूँ।
0: वकील गमा वलायदेन और असद पीहो अदालत में तुमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है। हालांकि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर उस पर पोसेशन ऑफ अ फायरआर्म विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की कोशिश के आरोप में बदला जाए। लवीना सूफी ने कल वकील असद पियाओ से बात की। अभी उदोरी
2: ला पुल इंस्टेंट ला प्रायोरिटी दे प्रायोरिटी से ला सांते दे मा क्लियंट नू पर्टान अवेक बेकू दे प्रायर।
1: अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरी मरीज की स्वास्थ्य स्थिति। हम सभी बहुत प्रार्थनाओं के साथ उनके ठीक होने की उम्मीद रख रहे हैं। न्यायिक रूप से हम यही कहना चाहते हैं कि इस पुलिस कर्मी के अस्थाई आरोप को लेकर फिर से गौर करना चाहिए। उस पर कई टेस्ट किए जाने चाहिए, खासकर ड्रग्स के टेस्ट, सीसीटीवी कैमरे पर भी देखना चाहिए। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि इस इलाके के कुल 3 कैमरे हैं। यहाँ तक कि इस इलाके के पुलिस स्टेशन में लगाए गए कैमरे को भी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। इस मामले में पारदर्शिता का होना बहुत ही आवश्यक है। सरकार को कोलिविए पुलिस विभाग के अलावा एक अन्य इलाके के पुलिस विभाग को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
0: और देश में पानी की कमी के चलते पिछले हफ्ते से कई इलाकों में रात के समय विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। हालांकि सबसे दुखद घटना निसंदेह शुक्रवार शाम को कोलिविए में पेश आई जहां एलोजीटोमा एक पुलिस अफसर द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुई। घटना के बाद से सर्जन गौतम तोको को हिरासत में रखा गया है। शनिवार को उसे वीकेंड कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और आज फिर से उसे रोजिल की अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ ये मामला कई सवाल खड़े करता है, खासकर पुलिस अफसरों की हथियार रखने की प्रोटोकॉल और सबसे बढ़कर उन हालातों के बारे में जिनमें उन्हें हथियार का इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विधान है। वित्याग तपस्या संयम वैराग्य और सदाचार का प्रतीक मानी जाती है। ये विशेष रिपोर्ट अभ्युदय के साथ।

माँ ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का मतलब है तप का आचरण करने वाली।

0: देवी दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला तथा अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लिया था। इस कठिन तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, फूल और पत्तों का सेवन करते हुए निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिससे उनका यह स्वरूप असीम धैर्य, अटूट संकल्प और अनुशासित प्रयास का प्रतीक बन गया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, भव्य और दिव्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और नंगे पैर चलती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपकी की माला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित होता है। यह सादगी और त्याग इस बात का संकेत है कि परम सत्य की खोज में बाहरी वैभव नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। नंगे पैर चलना जीवन के सभी कष्टों एवं कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक सहने का संदेश देता है, जबकि माला निरंतर भक्ति व ध्यान का और कमंडल पवित्र तथा संयम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को मन की शांति, अचल निष्ठा और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। इनकी कृपा से व्यक्ति के भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन उच्च आध्यात्मिक का या सांसारिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए त्याग, संयम और अनवरत प्रयास करना आवश्यक है। समाचार विभाग की ओर से शारदीय नवरात्र की मंगल कामना।
1: माँ भगवती दुर्गा को शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इन नवरात्रि के दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है और इसके लिए कल कलश स्थापना की गई।
2: हिंदू दर्शन में शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक बल या सामर्थ्य नहीं है, ये उस मूल ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और परिवर्तन संभव माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि साहस, सुरक्षा, न्याय, करुणा और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की दिव्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके अनेकांत विभिन्न शक्तियों और दायित्वों का प्रतीक हैं, जबकि सिंह या बाघ पर उनका विराजमान होना निर्भयता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण का संदेश देता है। नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख धार्मिक कथाओं में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से देवता और समस्त लोग त्रस्त थे, तब विभिन्न देवताओं की शक्तियों के एकत्र होने से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ था।
3: दुर्गा जी का सबसे महाशक्ति का प्रादुर्भाव उस समय हुआ, माने कि उल्लेख तब हुआ जब महिषासुर जैसे महादैत्य का वध हुआ। महिषासुर को हम लेंगे सिर्फ राक्षस के रूप में नहीं, महिषासुर को लेंगे हम जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, मद मोह है, उसको त्याग करके जब कोई विजय प्राप्त करता है उसको कहते हैं महिषासुर का वध के रूप में। जैसे दुर्गा सप्तशती में कहा गया अर्घरा स्त्रोत्र में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशोजी, कि हे माता जयम देहि मुझे विजय प्राप्त कराए, मेरे अंदर जो शत्रु, जो पाप हैं, जो दोष हैं उसको मैं नाश करके मैं विजय प्राप्त कर सकूं। विजय के बाद ही, पवित्रता के बाद ही भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है।
2: देश के मंदिरों में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाएगी।
4: भक्ति भाव से नौ दिन के व्रत, दसवां दिन विसर्जन, होयला पूर्णावति छाक के सब हमने के नारी जाति के शक्ति है कि हमने नौ दिन के व्रत रखी ला जा।
5: ये नवरात्रि एक संदेश पहुंचाता है कि संयम बनाए रखने के लिए, ये सिर्फ नमक खाना नहीं है, वो अपने आप का जो आत्म संयम बनाने का एक माध्यम है।
6: दुर्गा पूजा हम जो है शक्ति का रूप जो हम कहते हैं लाफोस जिविन, वो हमारी माताएं भी, हमारी बहन और हर स्त्री में है शक्ति, और उनका जो सम्मान जो है उनका करना चाहिए रोज।
2: इस पर्व का केंद्रीय संदेश ये है कि श्री

0: संरक्षण और परिवर्तन की शक्ति जीवन का अभिन्न अंग है। देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से श्रद्धालु न केवल दैवीय आशीर्वाद की कामना करते हैं, बल्कि साहस, आत्मबल, न्याय और सद्भाव जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेते हैं। ठीक 24 साल पहले 12 अक्टूबर 2002 को रोड्रिग्स को स्वायत्तता मिली थी। वहाँ रीजनल असेंबली स्थापित हुई, जिसे टापू को अपने फैसले लेने वाले अधिकारी चुनने और अपने इलाके में नीतियाँ लागू करने का अधिकार मिला। इस 24वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए गणराज्य के उपराष्ट्रपति ओबे हंगले वहाँ गए हुए हैं। रोड्रिग्स वासी इस बात से खुश और संतुष्ट हैं कि वे खुद के लिए काम करने में सक्षम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पहचान और सीमा पार पेमेंट, मॉरिशस डिजिटल भविष्य पर हो रही अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में शामिल होने वाला है। दुनिया भर के 15 देशों में से ग्लोबल डिजिटल कोलैबोरेशन काउंसिल की तरफ से मॉरिशस का चयन किया गया है। अभ्युदय,
1: ये निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब मॉरिशस अपने डिजिटल परिवर्तन को गति देने का प्रयास कर रहा है। देश के पास अब एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी यानी कि नीति है, जिसे पिछले अप्रैल में शुरू किया गया था। इसके साथ ही निष्पक्षता, जवाबदेही, समावेशिता तथा सत्यनिष्ठा पर आधारित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य खतरों को नियंत्रित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देना है। बुनियादी स्तर पर ऐसे प्रयासों पर काम हो रहा है जिनका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों को विकसित और लागू करने के लिए कंपनियों, स्टार्टअप्स और सार्वजनिक संस्थाओं को एक साथ लाना है। साल 2027 में ग्लोबल डिजिटल कोलैबोरेशन काउंसिल में भागीदारी इन प्रयासों को एक नया आयाम दे सकती है। इसके तहत मॉरिशस को प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों, डिजिटल पहचान और सीमा पार भुगतानों यानी कि पेमेंट्स पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में योगदान देने की दिशा में आमंत्रित किया जाएगा। पहचान और सम्मान से परे मुख्य चुनौती इस अंतर्राष्ट्रीय अवसर को व्यावहारिक और ठोस परिणामों में बदलने की होगी। मॉरिशस की डिजिटल सेवाओं में विश्वास को मजबूत करना होगा और साथ ही स्थानीय व्यवसायों के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी बाजार में नई संभावनाओं का निर्माण करना होगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलटकर डूबने से कम 139 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस नौका में 305 लोग सवार थे जो जिबूती से यमन जा रहे थे। आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मास्कारिंस के दक्षिण पश्चिम से एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। ऊंचाइयों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर आज रात से पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर पड़ेगा और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:42 मिनट पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:10 मिनट पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोलिविए में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई लोजीतो मां की हालत अभी भी नाजुक। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। कोलिविए के संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति

बनाए रखने की मांग की है और कहा है कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। पुलिस की तरफ से जारी एक कम्युनिके में सूचित किया गया है कि पुलिस सर्जेंटों को सहित 3 अन्य अफसरों को नौकरी से इंटरडिक्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिबूची के तट के करीब एक नौका के उलट जाने से कम 140 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में यूसुफ हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शुभ समाचार।

शोक समाचार सुनिए। नंबर 92 मोसेलमा गुइसो डेडेलिस विलनो मेबर्ग में। नंबर 92 मोसेलमा गुइसो डेडेलिस विलनो मेबर्ग में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवंती कोकिल, श्रीमती देवंती कोकिल पिताशी नाम नंदू जो साबित नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 92 मोसेलमा गुइसो डेडेलिस विलनो मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्कूल लेन कारोलिन में, स्कूल लेन कारोलिन में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की मिसेस बद्रुनिसान मुदाबकस, मिसेस बद्रुनिसान मुदाबकस जो चौथी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे इनके बेटे जनाब शौकत अली मुदाबकस के मकान स्कूल लेन कारोलिन से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए कारोलिन की मस्जिद त्वाहा ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। बिसुंदियाल लेन ऑसनाल में, बिसुंदियाल लेन ऑसनाल में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जानवेती राजकुमार, श्रीमती जानवेती राजकुमार जो सुनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे के पति श्री सी प्रसाद प्रेमचंद के मकान बिसुंदियाल लेन औसनाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम और शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। भगवान गली व्य गांव में, भगवान गली व्य गांव में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री नन कुमार तुता, श्री नन कुमार तुता जो जैक्सन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान शुमे भगवान व्योगांपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए व्योगांपो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शुमे सीएफियत पिटी वर्जे सैंपियामी, शुमे सीएफियत पिटी वर्जे सैंपियामी 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड जनाब अब्दुस सलाम अब्दुल सतो, जनाब अब्दुल सलाम अब्दुल सतो जो अब्दुस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 7:30 बजे, इनका जनाजा आज रात 7:30 बजे के मकान सैवियत गली पेची व्यर्जे सैंपिया से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए सैंपिया की अल अबरार मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए सेकोंस्तान सैंपिया का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुनाइट एट 7:30 PM। नंबर 16 चेदी लेन रोजिल में, नंबर 16 चेदी लेन रोजिल में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड जनाब अबू बकर खान चेदी, जनाब अबू बकर खान चेदी जो बकर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 7 बजे, इनका जनाजा आज शाम 7 बजे के मकान नंबर 16 चेदी लेन रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7 PM। मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में, मिशन क्रॉस रोड लालमाटी में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री जयराज सुखवारिया, श्री जयराज सुखवारिया जो विवेक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कविता सुखवारिया के मकान मिशन क्रॉस रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम

संस्कार के लिए लावा चौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM शांति निकेतन रोड रोशनवा में, शांति निकेतन रोड रोशनवा में 64 साल की 64 years old श्रीमती बिदवंती रामदोस, श्रीमती बिदवंती रामदोस पैदाशी नाम रामबख्श, जो रूपवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज सुबह 9 बजे, इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके बेटे श्री अतीश कुमार रामदोस के मकान शांति निकेतन रोड रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन के लिए 8:09 AM नंबर 33 जोसेफ ग्यूबे स्ट्रीट क्यूबेक में, नंबर 33 जोसेफ ग्यूबे स्ट्रीट क्यूबेक में 84 साल की 84 years old की मिसेज सारा बीबी जुमन, मिसेज सारा बीबी जुमन विदाशी नाम सखाबत, जो फरीदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 33 जोसेफ ग्यूबे स्ट्रीट क्यूबेक से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 10 AM एडेसी रोड पे चिराफे में, एडेसी रोड पे चिराफे में 45 साल के 45 years old श्री मित्रानंद जांदू, श्री मित्रानंद जांदू जो कोलोस नाम से ज़्यादा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 10:30 बजे, की अर्थी आज दिन के 10:30 बजे की माँ श्रीमती बीनता जांदू के मकान एडेसी रोड पीछे हाफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीछे हाफे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10:30 AM सीते सेंट ओबेम में, सीते सेंट ओबेम में 79 साल के 79 years old श्री गोविंदन रामा, श्री गोविंदन रामा जो राजन रुगाई नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे की पत्नी श्रीमती शोभा रामा के मकान सीते सेंट ओबेम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: गुड मॉर्निंग, शुभ नवरात्रि टू यू ऑल। इट्स मॉर्निंग बीट, सुबह के 7 बजे है।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सात बजकर अभी चार मिनट होने को है। आप जुड़े हैं इनटू रेडियो मस्ती के साथ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय माता दी, शुभ प्रभात मॉरिशस। इसे नवरात्रि के इस पवित्र पर्व के दूसरे दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ मैं मनीष मान। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि माँ दुर्गा की दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है आज। माँ ब्रह्मचारी तपस्या, धैर्य, संयम और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। वैसे उनकी पूजा हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में अगर हमारे इरादे मजबूत हो, मन में श्रद्धा हो, अगर कर्मों में सच्चाई हो, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो आज सुबह अपने आप से यह वादा कीजिए कि चाहे दिन कितने भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, हम अपना धैर्य नहीं खोएंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की ये जो प्रयास है करते रहेंगे। वैसे आप सभी का अभी के लिए स्वागत है। आगे टू सम रियली नाइस सॉन्ग जस्ट टू कीप यू अपडेटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑफ कोर्स सम नाइस सॉन्ग्स आपके मॉर्निंग को और भी पॉजिटिव बनाने के लिए थोड़ा सा हम भी योगदान देना चाहते हैं। वेलकम अभी के लिए
0: मॉर्निंग बीट
1: RM2 Radio Musti in the mix.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: So, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
4: Être bien sage.
3: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Kiki Fanville.
4: Ah ben, faudra être sage alors.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: चलिए जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से यहाँ पर मैसेजेस 549 and 1294 पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आज किसी अपने का जन्मदिन है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, भूलिएगा मत, सोचो आज कौन सा स्पेशल इंसान है जो 12 अक्टूबर को आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, रजिस्टर कीजिए। वी माइट डू अ सरप्राइज फॉर हिम और हर। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक।
1: रेडियो मस्ती
2: और केजी क्लासिक प्योगी विशेस ऑल डिवोटीज अप्पा इस गोविंदन। और केजी क्लासिक प्योगी अकंपेनिंग यू इन योर प्रेयर्स सिंस 1932 एन इंडियन क्लासिक प्योगी इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरआर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड।

ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी बॉन्को हार्ट के साथ टू ईच एंड एवरीबॉडी जो कि हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए रहते हैं. वैसे 24 आवर्स अ डे हम आपके एंटरटेनमेंट में प्रस्तुत करते हैं द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस. वैसे थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे विद द बर्थडे सरप्राइज. दिल की फ्रीक्वेंसी है अभी के लिए सोरे घर यानी आ टू मूवी से. हैव अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग. स्टे वेल कनेक्टेड. इट्स योर मॉर्निंग बीट.

0: excited for you. Hope you're having a wonderful time out there. Here we go for the surprise of the day.
1: A good beat for your morning show.
2: Radio Musti.
0: बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सरप्राइज करते हैं. हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं ये गिफ्ट वाउचर. अभी के लिए ये सरप्राइज हम करने वाले हैं टू सेल्विना. गुड मॉर्निंग टू यू सेल्विना.
3: गुड मॉर्निंग.
0: हैप्पी बर्थडे टू यू. इट्स फ्रॉम RM2. वैसे

0: थैंक यू
1: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और ये सरप्राइज आपके लिए क्या है, एक आपका लवली पति, उनका नाम है लवलेश.
0: राइट.
1: एंड वो अगर आपके साथ भी है तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद. अभी के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सिल्विना, आप रहती कहाँ हो?
0: बुलेरूज.
1: ओके, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया सरप्राइज के साथ?
0: नहीं नहीं.
1: आप खुश तो हो ना?
0: हाँ बहुत.
1: अमेजिंग. ये जो खुशी है हम हर रोज किसी ना किसी चेहरे पर लाना ही चाहते हैं. कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाता है, लेकिन कोई नहीं. आज आपका दिन है और आप बन गई हैं ये लकी विनर फॉर अ लोलो हाइपरमार्केट वाउचर. कंग्रेचुलेशंस.
0: थैंक यू.
1: वैसे आप कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी?
0: I want to dedicate a lovely song for my husband.
1: अच्छा बोलो.
0: And my
1: आप दोनों का
0: my family.
1: हाँ? आप दोनों का special song कौन सा है?
0: Special song कुछ भी चला दो, लेकिन romantic वाला.
1: Romantic वाला. Okay okay.
0: हाँ.
1: अगर मैं ये गाना चला दूँ, मेरे ढोल ना सुन.
0: Okay.
1: अच्छा सुनाइएगा उनको. ओके, हैव अ वंडरफुल डे. और आपने डेडिकेशन में किसी को मिस किया है, आप फिर से कह सकती हैं.
0: I want to dedicate the song to my whole family. My sister-in-law, my Shadasai, my parents, my mother, father, my sister, Sanjana Niyamal, and मेरी सासू माँ को.
1: Not to forget.
0: और हाँ, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी को और मेरा लवली हस्बैंड
1: लवलेश. यस, वो लवली है ना. लवलेश के साथ लवली आ जाता है.
0: हाँ, मेरा छोटा बेटा.
1: उनका नाम?
0: हे अंश.
1: ओके.
0: हाँ
1: ओके ओके. आपने किसी को मिस तो नहीं किया ना?
0: नहीं नहीं.
1: Very good. Thank you so much. Have a wonderful happy birthday.
0: Thank you.
1: Congratulations again.

0: from Radio Musti.
1: चलो स्पेशल हैप्पी बर्थडे गुजारू ईच एंड एवरीबॉडी. हर किसी का अगर आज जन्मदिन है, कुछ लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, यू नो, इन द मॉर्निंग रश एंड एवरीथिंग. मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन दिल से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. वैसे ये है नंबर 5491294 पर अगर भेजना चाहते हैं स्पेशल स्पेशल इंसान के लिए, उनका दिन अगर अच्छा करना चाहते हैं, सो बेशक यहाँ पर आपका स्वागत है. हम दिस नंबर 5491294 पर. अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन मेरे ढोलना आ रहे हैं आपके लिए, आपके मॉर्निंग को खुश करने के लिए. हैप्पी बर्थडे गुजार टू यू अगेन.
2: Radio Musti.
3: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगे वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के, और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी. उही खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है. सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा कर, जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे. यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी. हमनी से संपर्क कर या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है. नियम आ शर्त लागू बाटे. सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
4: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट.
2: Radio

7:30 बजने को है, आप जुड़े यार इनटू रेडियो मस्ती के साथ। होप यू हैविंग वंडरफुल टाइम। क्या गाना था ना, मेरी ढोलना। वैसे ये जो रेप्रीज वर्जन ऑफ मेरी ढोलना है काफी अलग है, वेरी इंस्पायरिंग, लेकिन ओरिजिनल वर्जन का जो टच होता है ना सॉन्ग्स में अलग ही है। वैसे नोबडी कैन रिप्लेस एन ओरिजिनल, यू नो हाउ इट इज। वैसे यहाँ पर इतने सारे लोगों का आज जन्मदिन है, वैसे अगर मैं वेट करूँ कि बाद में बोलूँ तो बहुत लंबी कतार हो जाएगी। और यहाँ पर हम विश करना चाहते हैं गुड मॉर्निंग एंड आई एम आरती फ्रॉम दुबई। आज मेरे भतीजे शेखर जी का जन्मदिन है। विश एम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भाभी आरती और भाई अनूप की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो मनीषमा, गुड मॉर्निंग टुडे माई सिस्टर केविशा, आज उनका जन्मदिन है। प्लीज विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम सिस्टर पूजा। मम है राजवनी आप गठिया सो दलगीश दानी जो फोन जिसे आके रहने वाले हैं। आज उनकी पत्नी का जन्मदिन है श्रेष्ठा दानी। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जी श्रेष्ठा जी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टुडे एंड फॉर लाइफ लॉन्ग के लिए। हाई कैसे हो, कैन यू प्लीज डेडिकेट ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर दादी कविता सोहन ऑफ पुतोदो विलास। शी इज सेलिब्रेटिंग एक्चुअली हर बर्थडे टुडे एंड टुडे इज हर डॉटर्स बर्थडे टू। क्या बात है, दो दो लोगों का आज जन्मदिन है। मिसेस पूनम श्याम ऑफ कोटेज विशिंग बोथ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम गीतिका एंड खेमी गंगादीन एंड सिस्टर सुनीता गंगादीन ऑल्सो। हेलो जी, यहाँ पर इतने सारे लोगों के जन्मदिन मिल गए। बेस्ट विशेस फ्रॉम पापा सुदेश, मामा मिमी, सिस्टर दीक्षा, ब्रदर इन लॉ अक्षय, शिवशंकर एंड होल चनान फैमिली ऑफ लाहौजा। विशिंग समवन रियली स्पेशल, आज उनका जन्मदिन है। उनका नाम है भविष्य धनुष चनान जो आज 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बात है, वंडरफुल। हेलो कोजेस, वर्षा लक्ष्मण फ्रॉम बेलव्यू मोरेल, वोने डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग वन लिटिल प्रिंसेस जो आज 1 साल की हुई है। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बड़ी एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम पापा विकेश, ब्रदर्स है वायु, विहान एंड ऑल लक्ष्मण फैमिली ऑफ बेलव्यू मोरेल। ऑल द बेस्ट गोज आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थोड़ी देर में बढ़ेंगे स्पोर्ट्स अपडेट्स की ओर। अभी के लिए सुंदरी आ रहे हैं फ्रॉम द मूवी भूत बंगला।

0: your number one Bollywood station.
1: 7:40 होने को है, थोड़ी देर में सुबह संदेश. I just want to be very, very positive in the morning. चाहे आप वैसे अभी अभी उठे हो या फिर कुछ देरी होगी, कोई बात नहीं. Frustration को fascination में बदल दीजिएगा.

लाइफ ऑलवेज प्रिपेयर समथिंग एल्स फॉर यू. हम चाहे कितने भी डिसिप्लिन में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो लाइफ चूज करते हैं हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है कभी कभी. वैसे ऑल आई वांट दैट यू ऑल बी ग्रेटफुल. लेट्स बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल आल्सो फॉर दैट वी गॉट दिस डे एंड सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर विद यू. स्माइल एंड बी पॉजिटिव इन द मॉर्निंग. Hey!

0: 8:46 हुए हैं. It's RM2 Radio Masti. Here we go for the sports updates.
1: Sports magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports news.
3: Radio Masti in the mix.
0: Good morning to you, Arvind ji.
4: Good morning, aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. इजिप्ट में लगे ट्रायथलॉन अफ्रीकन चैंपियनशिप से हमारी टीम दो मेडल्स जीत पाई. रिले मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल मॉरिशस के नाम. इससे पहले टिफानी पियात अफ्रीकन यूथ में चैंपियन बनी थी. मैनचेस्टर सिटी को आर्थिक घोटालों फाइनेंशियल ब्रीचेस पैसों की हेराफेरी के लिए दोषी पाया गया है, पर फुटबॉल मैदान में सारा गुस्सा बेचारे लिवरपूल के लालों पर उतार गया. एनफील्ड रोड लिवरपूल की ऐसी बेइज्जती हुई. एनफील्ड रोड में नए मैनेजर एंटोनी इराओला के गले से इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं है. ये उसकी पहली हार है, पर प्रीमियर लीग में एनफील्ड रोड में तीन मैचों में सीजन लिवरपूल एक भी मैच नहीं जीत पाया है. पिछले सीजन को लें तो पिछले पांच प्रीमियर लीग मैचों में चार ड्रॉ एक हार. खूब सिटी बजी, एक नहीं तीन बार बजी. एनफील्ड रोड में आकर मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से पछाड़ा. फर्स्ट हाफ में दोनों टीमें बराबरी पर थी, पर सेकंड हाफ में रॉयन ग्रेवेनबर्ग के रेड कार्ड के बाद लिवरपूल पिघल गया. अर्लिंग अलॉन, जेरेमी डोगू और रयान चर्की बारी बारी लिवरपूल पर टूट पड़े. मैनचेस्टर सिटी पर थोपे गए गिल्टी वर्डिक्ट को लेकर लिवरपूल के फैंस चिरहाने आए थे. एक ए जनरेशन ऑफ सपोर्टर्स चीटेड, पर मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी इसका जवाब मैदान में देने आए थे. लिवरपूल के लिए अलेक्जेंडर इसाक, डोमिनिक ज़ोबोस्लाय और कोडी गाक्पो इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे. इस लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी के सामने लिवरपूल लाचार और कमजोर था. फ्लोरियन वर्ट्स और ब्रैडले बाकोला फिर से नाकाम रहे. स्टेटमेंट विन सिटी की ओर से. मैदान के बाहर मैनचेस्टर सिटी पर समस्या गंभीर, पर मैदान में सिटी के खिलाड़ी सब अलग छोड़कर फिर से लीग लीडर, वो भी एनफील्ड रोड में आकर लिवरपूल को इस सीजन की पहली हार, पहली बेइज्जती का स्वाद चखाया. इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी फुल मार्क्स, 6 मैचों में 6 जीते, 6 out of 6 मैक्सिमम 18 पॉइंट्स. आर्सेनल 3 अंक पीछे है, जबकि लिवरपूल उतर आया है 9वें स्थान पे 9th पोजीशन, उसके पास 9 अंक है. सिटी के पास 18, आर्सेनल के पास 15, ब्राइटन 13 पॉइंट्स, ब्रेंटफोर्ड फिर एवर्टन और चेल्सी इनके पास है.

0: 10-10 अंक, लीड्स, हल, लिवरपूल, इप्सविच इनके पास है 9 अंक। मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें स्थान पे है, 13th पोजीशन, उसके पास है 6 अंक। कल के खेले गए अन्य मैचों में क्रिस्टल पैलेस 3, नॉटिंघम फॉरेस्ट 1, हल सिटी और एवर्टन के बीच मैच ड्रॉ गया 2-2। आज कोवेंट्री न्यूकासल यूनाइटेड का स्वागत करेगा। कोवेंट्री के पास 5 मैचों के बाद केवल 3 अंक हैं, न्यूकासल यूनाइटेड के पास हैं 8 अंक। अगर द मैगपाइज न्यूकासल यूनाइटेड की जीत हुई तो टॉप 4 में आ जाएंगे। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल सेल्टिक ने एवे जाकर मदरवेल को 2-0 से हराया। सी जॉनस्टन की भी जीत हुई 1-0 से अबर्डीन के मैदान में। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में साउथहैम्पटन 1, पोर्टसमाउथ 0। स्पेन के ला लीगा में रियल बेटिस और रियल सोसिएदाद जीत पाए। एल्चे सेल्टा वीगो ड्रॉ 0-0, रेसिंग सांतांडेर 2, वेलेंसिया 2। जर्मनी के बुंदेसलीगा में एफसी कोल 2, बोरुशा मोनकेनग्लाडबाच 1, फ्रीबर्ग 2, शाल्के 04 1। इटली के सीरी आ में कोमो 0, रोमा 0, लाजियो 3, मोन्जा 1, लेचे 1, बोलोन्या 2, सासुलो 1, एसी मिलान 1, कागलियारी 1, यूवेंटुस 1। फ्रांस के लीग मार्सेई ने एवे जाकर 3 को 2-0 से हराया। रेन की जीत 4-1 से ओसेया पर और निस ने स्ट्रासबूर को 2-1 से हराया। क्रिकेट, भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मैच में चक दे टीम इंडिया ने तीसरा मैच जीता। अभिषेक शर्मा 30 गेंदों 30 बॉल्स में 69 रन बना पाया। भारतीय टीम के 223 रनों के जवाब में वेस्ट इंडीज 209 रन बना पाई। अर्शदीप सिंह 3 विकेट ले पाया। इस सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है और 2 टी20 मैच खेलने हैं। टेनिस, चाइना ओपन में चीनी चैंपियन क्विन वेन जेंग पहली चीनी खिलाड़ी बनी चाइना ओपन जीतने वाली। फाइनल में जेंग ने मीरा आंद्रीवा को हराया 7-5, 6-4 से। जेंग वाइल्ड कार्ड थी पर चैंपियन बनी। एटीपी शंघाई मास्टर्स में रिया हुरकाज, वेरेव, फोकिना, कचानोव, डेमिनो, मैनसिच, बुबलिच क्वालिफाई हो पाए। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में सिंगापुर ग्रांड प्री में मैक्स वेरस्टापेन की जीत हुई। लेक्लेर्क दूसरे स्थान पर आया, तीसरे स्थान पर आया अंतोनेली। लीग चैंपियनशिप में अंतोनेली अभी 102 अंक आगे हैं। रीजनल स्पोर्ट्स में रोशनोआ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस वीकेंड बेजिटोंबो एफसी ने पेनाल्टी पर ब्लू एंजल्स रिवे जुरांपा को हराया और सिलेक्शन प्लान दे रोश की जीत हुई 1-0 से फ्लैक एस्पोर के खिलाफ। एसोसिएशन जुनेस स्पोर्टिव कारोलिन फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। दिवाली कप के लिए कल क्यूपी सेजियन मिल ने 3-2 से कारोलिन की लायन टीम को हराया। ये टूर्नामेंट कल से शुरू हुई है। दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। लिवरपूल के लाल बेहाल हो गए। मैनचेस्टर सिटी ने खूब सिटी बजाई पर अभी फाइनेंशियल ब्रीच को लेकर क्या होगा देखा जाएगा। लिवरपूल नाजुक है, लिवरपूल को संभलना होगा। अनफील्ड रोड में आकर कोई लिवरपूल को इस तरह से हराए बेइज्जती है, संभलो। नमस्कार, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड अ गुड वीक अहेड। टेक केयर, बाय बाय।
1: वेल, थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
4: Music all day long.
5: Radio Masti, sunte raho.
6: RM2.
7: Radio Masti.
8: Tech Mag, powered by
9: 365. Bien plus encore.
10: Every powerful machine has an emergency stop. So should artificial intelligence have one too? California is exploring the creation of an AI kill switch, essentially an emergency mechanism capable of shutting

नमस्ते पेशवा भोजपुरी के समाचार कॉलेवियो में सुख के गोली लगला से घायल होल एलो जी तो माँ के हालत अभियो नाजुक बतावल जाता और ऑपरेशन खातिर भारतीय डॉक्टर लोग की गो टीम आज मॉरिशस पहुँचता वहीं पर ही मामला में पुलिस के स्तर पर ही अनुशासनात्मक कदम उठावल जाता इस संवेदनशील मामला से देश में फैलल तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम जनता से शांति बना के रखे के माँ कलन आर बोलन की आक्रोश के कारण आर कोनो दुखद घटना पेश नहीं हो के चाहेला कॉलेवे में सुख के गोली चले के बाद रात के सिलसिला में पुलिस देने से कल जारी करल गल एक कम्युनिके में सूचित करल गल है कि पुलिस सर्जन तक होके काल 11 अक्टूबर के नौकरी से इंटरडिक्ट करल गल है कर संगे ही घटना के बखत स्थल पर ही मौजूद आर तीन गो पुरुष पुलिस अफसर लोग के कोनो ऐसा व्यक्ति की मदद नहीं करे कि इंटरडिक्ट करल गल है जेकर जान खतरे में रहल पुलिस के अनुसार ई मामला की पूरा गंभीरता से और कानून की पालन करे के संगे देखल जाता पुलिस देने से जनता की मांग करल जाता कि सोशल मीडिया पर ही कोनो भी जानकारी या तस्वीर साझा करे की बखत जिम्मेदारी और सतर्कता बरते के चाही एलोजी तोमा के ऑपरेशन खातिर आज भारत के करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग की गो टीम मॉरिशस पहुँचाता एकर में 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग और 5 टेक्निकल एजेंट लोग शामिल हवन जा भारत के सबसे बड़का प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक गो किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश झल्ला की निगरानी में ये टीम इस सर्जरी खातिर मॉरिशस आवता एकर उन लोग के आवे से अक्ति स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचुकाल विक्टोरिया अस्पताल में स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग के संगे गो बैठक लगेलन जेमें लोजी तोमा के हालत के जायजा लेवल जा सकी और ई जटिल ऑपरेशन के योजना बनावल जा सकी स्वास्थ्य मंत्री बोलन कि ऊ दोनों टीम के बीच के सहयोग के खुद के सरपरस्ती करत हुन उधर एलोजी के पति बोलन कि ई बेहद मुश्किल दौर के बावजूद ऊ हिम्मत बना के रखत हुन वकील रामावलायदन आर असाद पी अदालत में तुमा परिवार के प्रतिनिधित्व करत हुन जा ऊ लोग बोले हवन कि फिलहाल पीड़िता की सेहत ओ लोग के प्राथमिकता है हालांकि ऊ लोग ई मामला में से जुड़ल पुलिस अफसर पर ही लगावल गल शुरुआती आरोप के बदले के मांग करत हुन जा शनिवार के वीकेंड कोर्ट में पेश करला परी ओकर परी पोसेशन ऑफ फायरआर्म विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ के आरोप दर्ज करल गल रहल दोनों वकील लोग चाहत हुन जा कि आरोप के कम से कम हत्या के कोशिश के आरोप में बदलल जाए और इस बीच पुलिस कम्युनिकेशन सेल के अनुसार इस वारदात में शामिल पुलिस अफसर पर ही करल गल अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव साबित होल बाटे अब गहन जाँच खातिर ओकर ब्लड टेस्ट करल गल है शारदीय नवरात्रि के दूसरका दिन आज माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के आराधना करे के विधान बाटे उत्याग तपस्या संयम वैराग्य और सदाचार के प्रतीक मानल जालन ठीक 24 बरिसक 12 अक्टूबर 2002 के रोड्रिग्स के स्वायत्ता मिलल रहल हुआ रीजनल असेंबली स्थापित होल जेकर से उटापू के अपन फैसला लेवे होला अधिकारी लोग के चुने के और अपन इलाका में नीति लागू करे के अधिकार मिलल

0: 24वां वर्षगांठ समारोह में शामिल होए खातिर गणराज्य के उपराष्ट्रपति गोबे हंगले हुआ परी गैल हवन। दूसर देश की खबर में जिबूती के तट के करीब एगो नौका उलट गल बाटे जेकर से 139 जना की मौत की पुष्टि होल बा। एकर में 15 गोल लेका लोग शामिल हवन जा जबकि दर्जनों आदमी हबियो लापता हवन जा। इ नौका में 305 गो आदमी लोग सवार रहलन जे जिबूती से येमेन जात रहलन जा। ते रहल भोजपुरी के समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Morning Beat.
3: James. RM2, Radio Musty in the mix.

0: घूमे मुकेश श्री की आवाज में अभी के लिए मौसम का हाल. Here we go.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत मस्कारिंस के दक्षिण पश्चिम से एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान. आज सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा. ऊंचाइयों पर हल्की छींटे पड़ सकती हैं और रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादलों का असर खासकर पूर्वी दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर पड़ेगा और रह रहकर बारिश होगी. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा. दक्षिण

0: पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:42 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:10 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
1: Morning Beat.
2: James. RM2. Radio Musti in the mix.

0: कहीं नहीं थी मोहन के पास में, मेरा पिया घर आया. Have a wonderful start of the morning. यहाँ पर welcome back in the second hour. एक good news है आपके लिए.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए जी मुस्कुराहट के साथ इस second hour की शुरुआत करते हैं. वैसे यहाँ पर you can stand a chance to win a spa voucher worth 750 rupees from Mitsu Wellness Spa and an entry ticket to the spectacular Grand Diwali Night 2026. आपको सिर्फ बताना होगा कि ये जो Grand Diwali Night of 2026 है, 40th of November 2026 को होने वाला है. 40th of November आपको सिर्फ बताना है किस मॉल में होने वाला है. हाँ या ना में जवाब देना है. वैलेंटिना मॉल, हाँ या ना में जवाब दीजिए ऑन दिस नंबर 5991294 पर. जल्दी जल्दी से अपने सही जवाब दीजिएगा और यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 5991294 पर. इसके बाद हम लकी ड्रॉ करेंगे और आपका नाम निकल जाए तो क्या बात है.

0: मुझे मिल गया कौन हमारा लकी विनर.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: यार इतने सारे सही जवाब देने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मॉर्निंग. मैं जानती हूँ ना बहुत डिफिकल्ट होता है टू टेक द टाइम एंड यूज योर मोबाइल एंड सेंड अ मैसेज. वैसे यहाँ पर हमारे साथ हमारे लकी विनर है. थोड़ी देर हमने पूछा था सवाल कि ग्रैंड दिवाली नाइट के लिए एंड फॉर यू टू पार्टिसिपेट. सवाल ये था कि 14th of November को होने वाला है ग्रैंड दिवाली नाइट 2026. आपको सिर्फ बताना था कि वैलेंटिना मॉल में होने वाला है, हाँ या ना में जवाब देना था. एंड दिस इज द राइट आंसर. हाँ ऑफ कोर्स. एंड हमारे साथ लकी विनर है, उनका नाम है दिविना उस्मान जो रहती है कंदे मास्क. Congratulations! You got this spa voucher worth 750 rupees from Mitsu Wellness Spa and an entry ticket for the spectacular Grand Diwali Night 2026, organized by Luxury Distributors Limited in collaboration with MBC RM2 Radio Masti. This melodious evening of music and culture will take place on the 14th of November 2026 at Valentina Mall, featuring the unbeatable performances of Vineet Singh and Anita Bhatt, which is proudly sponsored by Valentina Mall and Mitsu Wellness Spa. Now you can reserve your tickets on Otayo and be part of the Grand Diwali Night 2026 go. Miss na kijiyega this spectacular evening of music, culture and entertainment. Abhi ke liye chhota sa break, then we'll be back with another show concours. Second hour, let's kush kush kush.
1: RM2
2: Radio Musti. Oula Banzen, tu es né en 18 et 30 ans, nous péatteins-toi les 31 octobre, l'embrasure, le monde pour nous premier SBM Trail. Imagine un déco en plein attir, loin de domaine.

0: A good beat for your morning show.
1: चलिए अभी के लिए एक और मौका दिया जा रहा है आप सभी को टू पार्टिसिपेट विद आरएम टू रेडियो मस्ती. एंड अभी के लिए मिल रहा है आपको किया. यू गेट रेडी एंड स्टैंड अ चांस टू विन वन गिफ्ट वाउचर वर्थ 1500 रुपीस पर विनर. यस, आपको मिल रहा है ये वाउचर टू यू बाय सेंटर पॉइंट. वैसे वहां पर एक दिवाली यू नो वी कैन से डांडिया विद सेंटर पॉइंट. यू कैन एंजॉय द मैजिक ऑफ डांडिया. बस आपको बताना है ये कब हो रहा है. हाँ या ना में जवाब दीजिए. इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द गेम. सो आपको ये बताना है कि सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर पर वहां पर हो रहा है सेंटर पॉइंट में डांडिया, मैजिकल डांडिया. हाँ या ना में जवाब दीजिए ऑन दिस नंबर 5499124 पर. इज इट हैपनिंग ऑन द सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर. और जीतिए ये अमेजिंग गिफ्ट वाउचर वर्थ 1500 रुपीज ओवर टू यू बाय सेंटर पॉइंट. वैसे 8:30 बजने को है, बस 2 मिनट बाकी. अभी के लिए आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड देन वी विल बी बैक विद द अपडेट्स ऑफ स्पोर्ट्स रिकैप. हियर वी गो.
0: RM2
2: रेडियो मस्ती उला बंजन ट्विन ऑफ

0: participants. Allô, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, parade ça!
1: Moments that matter with Sicom.
2: जुन लम्हा हमनी खातिर मायना रखेला समय के रहत हमनी के चाही ओकर खातिर तैयारी करे के एक दिन ऐसन आए जब काम की गति धीमा हो जाए और फिर पूरा थम जाए तब जीवन के एक नवा अंदाज में जिए के पड़ी जुन आज दूर लौकता काल वो उतना दूर नहीं रही पर तुहर आर्थिक भविष्य हमेशा जरूरी रही सिकोम के पर्सनल पेंशन योजना और इन्वेस्टमेंट प्लान्स के संगे अपन बचत पर खुद नियंत्रण रखिए और अपन भविष्य के बेहतर तैयारी करा सिकोम लगे तो हर गोल्स और इन्वेस्टमेंट

0: के टाइम पीरियड के अनुसार अलग अलग समाधान मौजूद बाटे। सिकोम तोहर आज काल और उस सब खास लम्हा खातिर जो मायना रखेला। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय हा। इमे नियम और शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: It was moments that matter with Sikkim.

नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
3: Here we go for the sports recap. हमारे साथ है अरविंद जी. गुड मॉर्निंग अगेन.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. इजिप्ट में लगे ट्रायथलॉन अफ्रीकन चैंपियनशिप से हमारी टीम दो मेडल्स जीत पाई. रेले मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल मॉरिशस के नाम. इससे पहले टिफानी पियात अफ्रीकन यूथ में चैंपियन बनी थी. मैनचेस्टर सिटी को आर्थिक घोटालों फाइनेंशियल ब्रीचेस पैसों की हेराफेरी के लिए दोषी पाया गया है. पर फुटबॉल मैदान में सारा गुस्सा बेचारे लिवरपूल के लालों पर उतार गया. एनफील्ड रोड लिवरपूल की ऐसी बेइज्जती हुई. एनफील्ड रोड में नए मैनेजर एंटोनी इराओला के गले से इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं है. ये उसकी पहली हार है. पर प्रीमियर लीग में एनफील्ड रोड में 3 मैचों में सीजन लिवरपूल एक भी मैच नहीं जीत पाया है. पिछले सीजन को लें तो पिछले 5 प्रीमियर लीग मैचों में 4 ड्रॉ 1 हार. खूब सिटी बजी, एक नहीं 3 बार बजी. एनफील्ड रोड में आकर मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से पछाड़ा. फर्स्ट हाफ में दोनों टीमें बराबरी पर थी. पर सेकंड हाफ में रायन ग्रेवेनबर्ग के रेड कार्ड के बाद लिवरपूल पिघल गया. अर्लिंग अलॉन, जेरेमी डोगू और रायन चर्की बारी बारी लिवरपूल पर टूट पड़े. मैनचेस्टर सिटी पर थोपे गए गिल्टी वर्डिक्ट को लेकर लिवरपूल के फैंस चिढ़ाने आए थे. एक ए जनरेशन ऑफ सपोर्टर्स चीटेड. पर मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी इसका जवाब मैदान में देने आए थे. लिवरपूल के लिए अलेक्जेंडर इसाक, डोमिनिक ज़ोबोस्लाई और कोडी गाक्पो इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे. इस लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी के सामने लिवरपूल लाचार और कमजोर था. फ्लोरियन वर्ट्ज़ और ब्रैडले बाकोला फिर से नाकाम रहे. स्टेटमेंट विन सिटी की ओर से. मैदान के बाहर मैनचेस्टर सिटी पर समस्या गंभीर. पर मैदान में सिटी के खिलाड़ी सब अलग छोड़कर फिर से लीग लीडर, वो भी एनफील्ड रोड में आकर लिवरपूल को इस सीजन की पहली हार, पहली बेइज्जती का स्वाद चखाया. इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी फुल मार्क्स. 6 मैचों में 6 जीते, 6 out of 6, मैक्सिमम 18 पॉइंट्स. आर्सेनल 3 अंक पीछे है, जबकि लिवरपूल उतर आया है 9वें स्थान पे, 9th पोजीशन. उसके पास 9 अंक है. सिटी के पास 18, आर्सेनल के पास 15, ब्राइटन 13, 13 पॉइंट्स. ब्रेंटफोर्ड, फिर एवर्टन और चेल्सी के पास है 10-10 अंक. लीड्स, हल, लिवरपूल, इप्सविच इनके पास है 9 अंक. मैनचेस्टर यूनाइटेड 13वें स्थान पे है, 13th पोजीशन. उसके पास है 6 अंक. कल के खेले गए अन्य मैचों में क्रिस्टल पैलेस 3, नॉटिंघम फॉरेस्ट 1, हल सिटी और एवर्टन के बीच मैच ड्रॉ गया 2-2. आज कोवेंट्री न्यूकासल यूनाइटेड का स्वागत करेगा. कोवेंट्री के पास 5 मैचों के बाद केवल 3 अंक हैं. न्यूकासल यूनाइटेड के पास हैं 8 अंक. अगर द मैगपाइज न्यूकासल यूनाइटेड की जीत हुई तो टॉप 4 में आ जाएंगे. स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल सेल्टिक ने एवे जाकर मदरवेल को 2-0 से हराया. सी जॉनस्टन की भी जीत हुई 1-0 से अबर्डीन के मैदान में. इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप

0: में साउथम्पटन 1 पोर्टसमुथ 0। स्पेन के ला लीगा में रियल बेटिस और रियल सोसिएदाद जीत पाए एल्चे सेल्टा वीगो ड्रॉ 0-0, रेसिंग सांतांडेर 2 वेलेंसिया 2। जर्मनी के बुंदेसलीगा में एफसी कोल्ड 2 बोरुशा मोनकेनग्लाडबाच 1, फ्रीबर्ग 2 शाल्के 04 1। इटली के सीरी ए में कोमो 0 रोमा 0, लाजियो 3 मोन्जा 1, लेचे 1 बोलोन्या 2, सासुलो 1 एसी मिलान 1, कागलियारी 1 यूवेंटुस 1। फ्रांस के लीग un mais Marseille ne évite déjà que 3 que 2-0 Sehraya, Rennes qui dit 4-1 au Seapal et Nice ne Strasbourg que 2-1 Sehraya. Cricket, Bharatiya team et West Indies qui beat T20 Series que 3 match mais Chuck Day, team India qui ne 3 match jita Abhishek Sharma 30 गेंदों 30 बॉल्स में 69 रन बना पाया। भारतीय टीम के 223 रनों के जवाब में वेस्ट इंडीज 209 रन बना पाई। अर्शदीप सिंह 3 विकेट ले पाया। इस सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है और 2 T20 मैच खेलने हैं। टेनिस, चाइना ओपन में चीनी चैंपियन क्विन वेन जेंग पहली चीनी खिलाड़ी बनी चाइना ओपन जीतने वाली। फाइनल में जेंग ने मीरा आंद्रीवा को हराया 7-5 6-4 से। जेंग वाइल्ड कार्ड थी पर चैंपियन बनी। एटीपी शंघाई मास्टर्स में रिया हुरकाज वेरेव फोकिना कचानोव डेमिनो मेंसिच बुबलिच क्वालिफाई हो पाए। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में सिंगापुर ग्रैंड प्री में मैक्स वेरस्टापेन की जीत हुई। लेक्लेर्क दूसरे स्थान पर आया, तीसरे स्थान पर आया अंतोनेली। लीग चैंपियनशिप में अंतोनेली अभी 102 अंक आगे है। रीजनल स्पोर्ट्स में रोशनोआ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस वीकेंड बेजिटोंबो एफसी ने पेनाल्टी पर ब्लू एंजल्स रिवे जुरांपा को हराया और सिलेक्शन प्लान दे रोश की जीत हुई 1-0 से फ्लैक एस्पोर के खिलाफ। एसोसिएशन जूनियर स्पोर्टिव कारोलिन फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। दिवाली कप के लिए कल क्यूपिप सेजियम मिल ने 3-2 से कारोलिन की लायन टीम को हराया। ये टूर्नामेंट कल से शुरू हुई है। So that's it, the latest from the sports world. चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। लिवरपूल के लाल बेहाल हो गए। मैनचेस्टर सिटी ने खूब सिटी बजाई पर अभी फाइनेंशियल ब्रीच को लेकर क्या होगा देखा जाएगा। लिवरपूल नाजुक है, लिवरपूल को संभलना होगा। अनफील्ड रोड में आकर कोई लिवरपूल को इस तरह से हराए बेइज्जती है। संभलो। नमस्कार, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड अ गुड वीक अहेड। टेक केयर, बाय बाय।
1: Well, thank you so much, Arvind ji, for the recap. And of course, 7:30 बजे के जो स्पोर्ट्स समाचार हैं जिन्होंने मिस किया है आप 8:30 बजे को पकड़ पाएंगे। अभी के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देन आई विल बी बैक विद अ लकी विनर।
2: RM2
3: Radio Musti.
4: Hey, comme salope au table 2?
5: Divali, Moyaz, Noël, l'année tout peut coster. Mon pégé t'écoute, nous capable faire un peu shopping.
4: Ben écoute sa nouvelle là. Et à Mauritius, peut donner une valise en plus quand tu peux aller à Mumbai ou Chennai. 3 valises te pour gagner. 3 fois 23 kilos.
5: Pas dire moi. Ah bien, nous allons nous ici d'où? Nous faire nous shopping et qu'une petite vacances nous venir. Pour tout vol à destination de Mumbai ou Chennai, vous avez droit à 3 valises de 23 kilos chacune. Offre limitée. Pour plus de détails et conditions, appelez-nous au 207 75 75. Visitez notre site web Air Mauritius ou contactez votre agence de voyage.
2: RM2
3: Radio Musti.
6: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
7: लड़की बड़ी अनजानी है।
3: Radio Musti, all the way.
8: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
3: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: your musty. A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Musty. कुछ देर पहले हमने पूछा था सवाल कि दिस सैटरडे 17th ऑफ अक्टूबर पर होने वाला है डांडिया

0: जवाब देना था हमारे पास, हमारी सही जवाब के साथ लकी विनर बन गई है विदुषा पुरुषोत्तम, कंग्रेचुलेशन। एंड दिस इज द राइट आंसर, थैंक यू सो मच, यू वन दिस गिफ्ट वाउचर वर्थ 1500 रुपीज ऑफ ट्यूब बाय सेंटर पॉइंट। Get ready to celebrate the magic of Dandiya with Centerpoint. This Saturday, 17th of October, experience an evening of vibrant colors, festive beats and unforgettable moments at Centerpoint Triano as from 6 p.m. Kahan hai jahan taal hai? Har taal mein hai jashn aur har kadam mein hai rang. Centerpoint Dandiya night, one evening, one rhythm, an experience to live. Another gift voucher coming up for you, ladies and gentlemen. Bas aap jude rahiye hamare saath. Enjoy kijiye the next one.
1: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
0: मीत ब्रॉस मोनाली ठाकुर की आवाज में, चलिए आपको सिर्फ बताना है ये गाना जो हम चला रहे हैं रात बाकी, इज टेकन फ्रॉम विच मूवी, सिंपल बना देते आपके मॉर्निंग को और भी रॉकिंग विद दिस क्वेश्चन, और जीतिए अनदर गिव आउट ऑफ 1500 रुपीस ऑफ टू यू बाय सेंटर पॉइंट फॉर द डांडिया। हियर वी गो, ऑल द बेस्ट विद द फुल नेम एंड एड्रेस 5499129249।

0: रात बाकी वो सीख फ्रॉम द विच मूवी एंड द राइट आंसर इज सत्य प्रेम की कथा. एंड ऑफ कोर्स यहां पर आपके लिए लिखकर आ रहे हैं ये गिफ्ट वाउचर 1500 रुपीस ऑफ ट्यूब बाय सेंट पॉइंट. जी हां, हमारे साथ हमारे लकी विनर का नाम लेते हैं. एंड कंग्रेचुलेशंस, मिनी मिनी कंग्रेचुलेशंस गोज आउट टू मिस यूवीना जगदेव जुड़ेतिया फ्लोरिया. कंग्रेचुलेशंस टू यू. Well, thank you so much for participating. Again, get ready to celebrate the magic of Dahlia Hall Centrepoint this Saturday, 17th of October. Experience an evening of vibrant colors, festive beats, and unforgettable moments at Centrepoint Triano as from 6 p.m. Centrepoint Dahlia Night, one evening, one rhythm, and experience to live. Thank you so much for participating. Here we go. Have a wonderful day, and congratulations again to Yovina Jagdeo.
1: RM2 Radio Musty in the mix. Jeez, a buddy.

0: Good food, good life.
1: चलिए जी, अभी के लिए बढ़ते हैं आज के शुभ कई जो शुभ शुरुआत करना चाहते हैं भारत के महान वैज्ञानिक और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा एक इंस्पायरिंग कोट. उन्होंने कहा था कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शन. दोस्तों, सपने देखना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ सपने देखना ही मंजिल तक नहीं पहुंचाती. उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने विचारों को एक्शन में बदलना होता है. जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने गोल्स को पहचानें कि आप रियल में चाहते क्या हैं, और उन्हीं सपनों पर विश्वास रखें और काम करते चले, और हर दिन अपने मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाएं जरूर. कभी अपने सपनों को छोटा मत समझिएगा और ना ही मुश्किलों से डरिएगा. याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक छोटे से विचार और एक मजबूत इरादे से होती जरूर है. That was your quote of the day.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
0: Nestlé, good food, good life.

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: बजकर 55 मिनट हो रहे हैं, अभी के लिए जाने का समय हो चला। Yes, 2 hours fly very, very quickly, right? With the good music and good company, of course, the right thoughts, the right vibes, and the right beats. अभी के लिए हमको इजाजत दीजिए, विकास आ रहे आपका साथ माने के लिए। Of course, रहेगा हमारे साथ 24 hours a day. Bye bye, take care, happy नवरात्रि।

0: सुनते देश विदेश की खबरें आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, श्रोताओं को भी नमस्कार। कॉल रिव्यू में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलोजी, तो मां की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश चिनिया द्वारा किया गया है। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। वहीं इस मामले में पुलिस के स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संवेदनशील मामले से देश में फैली तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामबुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि हमारे देश की स्थिरता एक बहुमूल्य संपत्ति है और उन्हें उम्मीद है कि समस्त जनता स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कॉलोनी में जो हुआ वो अस्वीकार्य है। डॉक्टर नवीन रामबुलाम ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और समझदारी से काम लेगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। एलोजी तोमा के ऑपरेशन के लिए आज भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से एक किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश झल्ला की निगरानी में ये टीम इस सर्जरी के लिए मॉरिशस आ रही है। उनके आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल विक्टोरिया अस्पताल में स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक लगाई ताकि एलोजी तोमा की हालत का जायजा लिया जा सके और इस जटिल ऑपरेशन की योजना बनाई जा सके। वकील रामा वलायदेन और असद पीरू अदालत में तोमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है, लेकिन वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर उस पर पोसेशन ऑफ अ फायर आर्म विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की कोशिश के आरोप में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलट कर डूबने से कम 139 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं जबकि दर्जन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस नौका में 305 लोग सवार थे जो जिबूती से येमेन जा रहे थे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए। नमस्कार।
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: जय माता दी। 9:07 और हम साथ साथ हैं,
1: सुनते रहो।
0: Hey guys, a very good morning. सभी का स्वागत है एंड आई एम टू यानी रेडियो मस्ती बिल्कुल सेट टू गेट यू एंटरटेन। और वहीं पर म्यूजिक का कनेक्शन हो जाए तो सब कुछ ठीक ही होता है, राइट? ऑलराइट, हैप्पी मंडे मॉर्निंग, नए हफ्ते की शुरुआत।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ब्यूटीफुल एनर्जेटिक स्टार्ट, और वहीं पर बात करेंगे बी टाउन की कुछ खबरों की, क्योंकि मूवी रिलीज हुई और वहीं पर आपके हॉरोस्कोप। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, 12th of October। हेलो,

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: तो आप चलते हैं सितारों की चाल देखने के लिए और शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई आज आपका जो कॉन्फ्रेंस है फुल पावर में रहेगा। ऑफिस हो या बिजनेस, अपनी बात क्लियरली रखिए। बॉस को इम्प्रेस करने के चांस मिल सकते हैं। सिंगल हैं तो आंखों ही आंखों में कोई सिग्नल मिल सकता है। कपल्स का ईगो भाई साइड में रखो और निकल पड़ो। जोश में आकर शॉपिंग का सिक्सर मत देना, जरूरी है थोड़ा बजट को कंट्रोल करना।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: पर करियर की बात करें तो पेंडिंग काम निपटाने का बढ़िया मौका है। किसी दोस्त या कलीग की एडवाइस काम आ सकती है। पार्टनर के साथ एक क्यूट डेट या हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन मूड बना देगी। बजट संभाल के रखिए, हर शाइनी चीज खरीदने की जरूरत नहीं होती।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: भाई आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आज ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं। मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या नेटवर्किंग में अपना चार्म दिखा सकते हैं। भाई अपने जो मैसेज हैं थोड़ा सोच समझ कर, नहीं इसलिए क्योंकि एक बार भेज दिया तो फिर वापस कैसे आएगा, किसी को पता चल ही जाएगा। सोच समझ कर ऑनलाइन डील्स देखकर चेकआउट करने से पहले दो बार सोचिए।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: टीम वर्क से मुश्किल काम आसान हो सकता है। सब कुछ अकेले

0: करने की जरूरत नहीं है. दिल की बात दिल में मत रखिए. एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को और गहरा बना सकती है. वैसे अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम जरूर निकालें.
1: लियो सिंह राशि.
0: लियो जो भी काम है उसको कर दियो. आज लीडरशिप दिखाने का मौका मिल सकता है. स्पॉटलाइट मिले तो शाइन करिए, लेकिन टीम को क्रेडिट देना मत भूलिए. रोमांस में ग्रैंड जेस्चर्स का मन करेगा. एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज्यादा हार्टफेल आपका टेंशन ज्यादा काम करेगा.
1: वर्गो कन्या राशि.
0: अपनी जो टू डू लिस्ट है, जो करना चाहते हैं वो निकालिए, क्योंकि फोकस आपका सुपरस्टार है और वो भी कमाल कर सकता है. पुराने काम कंप्लीट करने ये जरूरी इम्पोर्टेंट है कि आप नया प्रोजेक्ट लेकर बैठ जाएं. हर बात का पोस्टमार्टम ना ये करना बंद कर दीजिए. थोड़ा रोमांच शुरू कीजिए और फिर देखिए जिंदगी में रूप और रंग खुशियों के संग संग.
1: लिब्रा तुला राशि.
0: लिब्रा आज की कहानी कुछ ऐसी है कि नेगोशिएशन और टीम वर्क में डिप्लोमेसी आपकी सुपर पावर रहेगी. अपनी वैल्यू को कम अदा किए. आज का कॉस्मिक मूड कह रहा है कि कम्युनिकेशन ये काफी कमाल हो सकती है. और सिंगल है तो किसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन से दिन बन सकता है. शॉपिंग कार्ट को थोड़ा आराम दीजिए. बैलेंस सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बैंक अकाउंट में भी जरूरी होता है.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
0: भाई आज की जो कहानी है अच्छी है, लेकिन डिटेल्स पर नजर रखिए. किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कामली समझना आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है. इमोशंस इंटेंस हो सकते हैं. शक करने से पहले बात करिए. हर साइलेंस का मतलब सीक्रेट नहीं होता.
1: सजिटेरियस धनुराशि.
0: धनुराशि नए आइडियाज और लर्निंग के लिए अच्छा दिन हो सकता है. किसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करिए बस होमवर्क करके. स्पॉन्टेनियस प्लान्स रोमांस में तड़का लगा सकते हैं. और पैसे की बात करें तो एडवेंचर बजट में रखिए. इंपल्सिव बुकिंग से बच के रहना.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
0: भाई डिसिप्लिन और प्लानिंग आपके स्ट्रॉन्गेस्ट कोसा हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करिए और जरूरत हो तो हेल्प मांगिएगा. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, रिलेशनशिप को भी टाइम देना जरूरी है. और पैसे की बात करें तो लॉन्ग टर्म गोल्स और सेविंग्स पर नजर रखिए.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि.
0: आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना अच्छा होता है. आपको कुछ अलग पहचान दिला सकता है. अपने विजन को शेयर करिए और थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है. फ्रेंडशिप से रोमांस की तरफ कोई क्यूट ट्विस्ट आ सकता है. बस अजम्पशन के बजाय ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखिए.
1: पाइसेस मीन राशि.
0: मीन राशि क्रिएटिविटी आपको फ्रेश आइडियाज दे सकती है, लेकिन ड्रीम्स को एक डेडलाइन के साथ जोड़िए ना. रोमांटिक मूड ऑन है. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. मंडे की शुरुआत है तो बढ़िया है, थोड़ी सी एनर्जी लेकर आना भी जरूरी है. नींद हाइड्रेशन और थोड़ा सा क्वाइट टाइम आज अपने माइंड को रिचार्ज करिए और शुरू हो जाइए.
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: भाई दृश्यम जिसने बना ली वाइगढ़ वो नाच ही रहा है। पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री। हाँ कहते हैं अब फाइनली कहानी खत्म हो गई, इट्स अ कंक्लूजन।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: भैया सचे देवगन जयदीप अलावत और उनकी जो टीम है उन्होंने कमाल कर दिया है। वैसे 10 दिन के अंदर ही काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पर 2020 में ख़त्म हुई थी दृश्यम 2 और वहीं पर हनुमान अंश। ये कहानी भी बहुत ही कमाल की चल रही है, मूवी ने कमाल कर दिया है। 66वें दिन जोर की दहाड़ लगाई और छठी मैया पर आशा वाली जो दवन है वो भी निकली आगे मिर्ज़ापुर से।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसे साहब, जहाँ पर वीकेंड काफी कमाल रहा क्योंकि बहुत सारा फुटबॉल एक्शन रहा, वहीं पर किसी किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि रिजल्ट कुछ ऐसे रहे। लेकिन अब ये रिजल्ट ये है कि मंडे शुरू हो चुका है। गुड वाली मॉर्निंग आप सभी को। और वीकेंड की पार्टी खत्म और अलार्म की जो टिनी टिनी वो बजती है ना, हाँ वो भी कहानी खत्म हो चुकी है। 99 प्लस मैसेजेस और दिमाग में सिर्फ एक गाना, आज फिर जीने की तमन्ना है। लेकिन सुनो मेरे मंडे के सुपरस्टार्स, मंडे को हेट क्यों करना जब उससे अपनी लाइफ को सेट किया जा सकता है। भाई आज का जो मंत्र वही है कि डू नॉट फाइट मंडे के जितने भी घंटे उनसे। चलिए सीखते हैं कैसे वो कि प्रेशर को थोड़ा सा मैनेजेबल बनाए। भाई सुबह का ना मूड सेट करो, अलार्म बजते बोलो कि चलो ठीक है फिर से ऑफिस, कलीग से मिलेंगे, कुछ बातें होंगी, चलो थोड़ी फुटबॉल के साथ ही शुरुआत कर लेंगे। लेकिन उठकर खाना पीना खाना, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, स्ट्रेचिंग करना, योगा करना, और याद रखना कि सुबह की पहली थॉट ही पूरे दिन की ट्रेलर होती है। टू डू लिस्ट तो बना दी ना, यानी कि इंपॉर्टेंट टास्क कौन सी है, 25 मिनट का फोकस चैलेंज, या फिर अरे ब्रेकअप लेना है, या फिर पानी का पीना है। मंडे को पनिशमेंट नहीं, अपॉर्चुनिटी समझो। ये सोचो कि एक हर एक छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही में लंच में क्या खाएंगे अपने लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड प्लान कर लो। और हाँ, हर ईमेल का रिप्लाई इमरजेंसी नहीं होता। अपने आप से थोड़ा सा प्यार करना सीखो, वही जरूरी है। मंडे को गले लगाओ, टेंशन को दूर भगाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ। खूबसूरत जिंदगी है, ब्लॉकबस्टर बनाओ। अरे ब्लॉकबस्टर के चलते ये क्या हुआ, कैसे हुआ? प्यार इश्क और मोहब्बत। Keep smiling, keep shining.

0: That's right.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.
0: जैसे गाने के साथ पहुंचे सीधा आप 10 बजे के समाचारों की ओर, फिर मिलते हैं द सेकंड आवर मस्ट मॉर्निंग शो. मूड सेट, मंडे सेट.

0: 12th of October, Monday ka din, time check exactly 10 a.m. स्टूडियो में आ गया रहती हूँ, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। कोलंबिया में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलोजी तोमा की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है, इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश चिनिया द्वारा किया गया। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। वहीं इस मामले में पुलिस के स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पेज पर लिखा कि हमारे देश की

0: स्थिरता एक बहुमूल्य संपत्ति है और उन्हें उम्मीद है कि समस्त जनता स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कोलंबिया में जो हुआ वो अस्वीकार्य है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और समझदारी से काम लेगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। देश में पानी की कमी के चलते पिछले हफ्ते से कई इलाकों में रात के समय विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। हालांकि सबसे दुखद घटना निसंदेह शुक्रवार शाम को कोलंबिया में पेश आई, जहां एलोजितोमा एक पुलिस अफसर द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुई। घटना के बाद से सौजत गौतम टकू को हिरासत में रखा गया है। शनिवार को उसे वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया था, आज फिर से उसे रोसिल की अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ ये मामला कई सवाल खड़े करता है, खासकर पुलिस अफसरों के हथियार रखने की प्रोटोकॉल और सबसे बढ़कर उन हालातों के बारे में जिनमें उन्हें हथियार का इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। उधर एलोजितोमा के ऑपरेशन के लिए भारत से डॉक्टरों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही हैं और वे स्थिति का जायजा लेंगे। स्टॉक एक्सचेंज और मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद ने टीम हॉगवेन को सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर वे अगले 2 दिसंबर को ये पद संभालेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के अनुभवी पेशेवर टीम हॉगवेन ने एक दशक से ज़्यादा समय तक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज की एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल के गोरखा इलाके में कल अचानक बाढ़ उतर आई, जिससे कई मकान और पुल बह गए। करीब 95 लोगों को बचाया जा सका है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक इस बाढ़ के अचानक उतरने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि किसी नदी के बहाव के बाधित होने से बांध पर दबाव पड़ा, जिससे वो टूट गया और बड़ी मात्रा में पानी बह निकला। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रोजलिन कोटेज सैंपिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड जनाब रफीक दलीप जो वाहिद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके मकान रोजलिन कोटेज सैंपिया से उठा कर दफनाने के लिए सैकुंस्तान सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM। रोत गनाजिन सीते सैन लुई पाए में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड जनाब हुसैन शाह चमरअली जो बाय असेंजाली नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और रोबेल में पूर्व वॉशमैन थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे जनाब रहमतुल्ला चमरअली के मकान रोदगनाजिन सीते सैन लुई पाए से उठा कर पहली नमाज जनाजा के लिए कौशापलो की कदरेशी चिश्ती मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए पाई का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। सीते ओर्जी सॉन्ट दे फ्लाक में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुबौती जगेसा पैदाशी नाम से सरन जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान सीते ओर्जी सॉन्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। गैस कांटो नंबर दो वाकवा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती नर्मदाए बाबली पैदाशी नाम जानकू जो मानुबाई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान गैस कांटो नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फी आइनों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: on MBC Play.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: La fin l'année des costés, tu ne parais?
4: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
3: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côte Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'os autres premiers mensualités.
4: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
3: Application facile! Zis avec ton code identité.
4: Asté à mon faire l'année sans tracas.
3: Attendez, fais ou application premier crédit côte Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Au perçu licence de la

0: meilleurs participants. Alors, rendez-vous les 31 octobre. SBM Trail, pas rate ça.
1: सिद्धि विनायक शॉप विशेस यू अ शुभ नवरात्रि मे दुर्गा माँ ब्लेस यू ऑल
2: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन

0: सेकंड आवर 10:18 एंड ये जो प्यार है और गहरा होता जाए, ये जो कनेक्शन है और गहरा होता जाए म्यूजिक के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती में विकास आपके साथ एंड कंटिन्यूस टिल 12
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: RM2
2: रेडियो मस्ती

Alright, ladies and gentlemen, बस थोड़ी सी टेक्निकल सिचुएशन हो गई है, उसको ठीक करते करते वी गोइंग ऑन टू द म्यूजिक. थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए. कुछ मैसेजेस लेकर हम जरूर आपके साथ जुड़ते हैं. और यहाँ पर कहते हैं हेलो जी, गुड गुड मॉर्निंग, लवली सॉन्ग, थैंक यू सो मच. और विभा का बर्थडे, सो बहुत सारा प्यार उनके लिए. नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक और नाइस मौसम, नाइस सिलेक्शन, रोशनी है क्या तुम से? अच्छा ये बात है कि वक्त होना चाहिए और वक्त है तो सब कुछ बढ़िया है ना. यमराज जी, उनके लिए एक प्यासा मैसेज एंड बेस्ट विशेस पापा विकेश, ब्रदर वायु, विहान एंड सभी लक्ष्मण फैमिली है, भी मोहल से हैं. और वर्षा जी आपको भी अब बिग हेलो, गोज आउट टू लिटिल प्रिंसेस, प्यारी सी परी, अब धीरे धीरे होती जा रही बड़ी, बहुत सारा प्यार उनके लिए. लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट सॉन्ग लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑल हाँ.

चले धीरे धीरे दुनिया का जो असर है वो सब पे पड़ता ही है, भागा दौड़ी सुबह, इतनी सारी टेंशन, सब कुछ सोचना है कि ये कैसे वो कैसे, लेकिन अपने दिल को थोड़ा आराम दो, थोड़ा सुकून दो और ये सोचो कि सब कुछ ठीक होने वाला है. ऑफ कोर्स द म्यूजिक फ्लोज इन एंड कम्स टू योर रेस्क्यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल हैपनिंग ऑन रेडियो मस्ती. चलिए हम तो कहेंगे बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी हू इज लिसनिंग इन. और जैसे हमने बताया कि अभी थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हो रही है, उनको हम ठीक ठाक कर रहे हैं, उसके बाद वी विल गेट गोइंग स्मूथली. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. राइट, कहानी अपनी चलती रहेगी एंड लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन. देख रहा हूँ यहाँ पर कह रहे हैं कि बस सब कुछ ठीक है, मौसम काफ़ी बढ़िया चल रहा है एंड ऑल दैट मैटर्स इज कि आपनी हमारी कंपनी.

All right, ladies and gentlemen, कहानी अपनी चलती रहेगी और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि म्यूजिक यहाँ से फ्री फ्लो चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोशिश जारी रख रहे हैं. वी गोना गेट बैक विद मोर म्यूजिक. राइट, देख रहा हूँ कि गाने चल रहे हैं धीरे धीरे सही, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे अपनी बात भी बनती जा रही है. सो हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और साथ में बताएं कि आपकी साइड पर मूड और मौसम कैसा है.

अच्छा कुछ पहले बात करते हैं कि बॉलीवुड की मूवीज और जहां पर अभी दृश्यम आ गई पार्ट 3 यानी कि कंक्लूजन, उसके बाद और कोई खाने नहीं बनने वाली यानी कि दृश्यम की, लेकिन वहीं पर हनुमान अंश ये काफ़ी कमाल की चल रही है। वी टॉकिंग अबाउट ये आध्यात्मिक कहानी है, संत नीम करोली बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों पर बनी कहानी है और सुपर ब्लॉकबस्टर बन गई है। किसी ने सोचा नहीं था कि कहां पर एक लड़की निकलेगी रिसर्च करने के लिए नीम करोली बाबा पर और उसके बाद मूवी ही बन जाएगी। और उसके बाद वो उनका कहना है कि इतने पैसे उन्होंने कभी देखे नहीं, करूँ तो क्या करूँ, एंड निकल पड़ी लोगों की सेवा करने के लिए। बस कहानी कुछ अलग ही है। वैसे फिल्म उत्तर भारत में लक्ष्मी नारायण की आध्यात्मिक यात्रा और फिर उनके नीम करोली बाबा के रूप में बदलने की कहानी। कुछ बातें हम जरूर करते रहेंगे, अभी के लिए चलते हैं बैक विद म्यूजिक।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव, अपन संगे वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी। उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है। सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकबा करे। यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी। हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है। नियम आ शर्त लागू बाटे। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।

0: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
1: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
0: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
1: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
2: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जोरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: L'occasion Durga Puja, Fresh Flora Malini Fleuris Planté, importateur fleur, puis offert un discount spécial, l'eau sous ban guirlande, bouquet et fleur dans tout ban magasin à travers l'île. L'Almaty, Flat Cœur de Ville, Goodlands Cœur de Ville, Royal Road Goodlands, Rivière du Grand-Port, Flat Retail Park, Bel Air et Richter Mall. Pour plus de renseignements, contactez-nous le 57 96 92 24 57 96 92 24.
2: RM2 Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
2: चलिए साहब थोड़ी सी फैशन टिप्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़रूरी है आजकल के मौसम को ध्यान में रखना। आज वेदर थोड़ा सनी सनी, थोड़ा सा क्लाउडी भी है एंड आफ्टरनून में रेन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी। सो लाइट कॉटन क्लोथ्स बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे, कॉम्फी स्नीकर्स और साथ में एक स्टाइलिश अम्ब्रेला। लेडीज लाइट कलर्स और ब्रीजी ड्रेसेस के साथ अपने फैशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। लुक स्मार्ट, स्टे कूल, फैशन भी ऑन पॉइंट एंड रेन से भी नहीं होंगे डिसअपॉइंट।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. RM2
1: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
3: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से आलू का जो दुर्गा पूजा फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस प्लांटे इंपोर्टेड फ्लोर पे ऑफर एंड डिस्काउंट स्पेशल लो सुबन गेलोंट बुके एक फ्लोर दो टू बन मैगज़ीन अ ट्रैवेल लिल लालमाची फ्लैग क्यूर दे विल गुडलैंड्स क्यूर दे विल रॉयल रोड गुडलैंड्स रिविया दु ग्रैंड पार्क फ्लैग रिटेल पार्क बेलेयर एक रिश्टेर मॉल पोर प्लस रेनसेमेंट कॉन्टैक्टे नू लो 57 96 92 24 57 96 92 24.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: स्वागत आप सभी का, लेडीज एंड जेंटलमैन, 11 बज चुके हैं और स्टूडियो में आ गई हैं आदित्य, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। कोलंबिया में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलोजी तोमा की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश छिनिया द्वारा की गई। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम मुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पेज पर लिखा कि हमारे देश की स्थिरता एक बहुमूल्य संपत्ति है और उन्हें उम्मीद है कि समस्त जनता स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कोलंबिया में जो हुआ वो अस्वीकार्य है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और समझदारी से काम लेगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। एलोजी तोमा के ऑपरेशन के लिए आज भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल होंगे। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश झाला की निगरानी में ये टीम इस सर्जरी के लिए मॉरिशस आ रही है। उनके आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री

डेनियल बेशो ने कल विक्टोरिया अस्पताल में स्थानीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक लगाई ताकि एलोजीतोमा की हालत का जायजा लिया जा सके। कोलंबिया में शुक्रवार को गोली चलने की वारदात के सिलसिले में पुलिस की तरफ से कल जारी कम्युनिके में सूचित किया गया कि पुलिस सर्जेंट तोको को कल 11 अक्टूबर से नौकरी से इंटरडिक्ट किया गया है। आज उन्हें रोजिल की अदालत में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही घटना के वक्त स्थल पर मौजूद और तीन पुरुष पुलिस अफसरों को भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न करने के लिए इंटरडिक्ट किया गया है जिसकी जान खतरे में थी। पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से और कानून का पालन करते हुए देखा जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद ने टिम हॉगबेन को सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर वे अगले 2 दिसंबर को ये पद संभालेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के अनुभवी पेशेवर टिम हॉगबेन ने एक दशक से ज़्यादा समय तक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज की एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में गोरखा इलाके में कल अचानक बाढ़ उतर आई जिससे कई मकान और पुल बह निकले। करीब 95 लोगों को बचाया जा सका जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 63 साल की 63 years old श्रीमती सेल्वो नाइगी मुनिसोमी। श्रीमती सेल्वो नाइगी मुनिसोमी पैदाइशी नाम मुनिगाडू जो पद्मिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे मुगा फ्यूनरल सेंटर रॉयल रोड पेची थ्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: La fin l'année des costés, t'en parais?
3: Pas juste l'année, et ta dépense aussi.
2: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client code Rogers Capital, pégaye 500 roupies rabais, l'ose de premier mensualité.
3: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
2: Application facile! Zis avec le code identité.
3: Asté à m'offrir l'année sans tracas.
2: Attendez, fais ou application premier crédit code Rogers Capital. Offre valable.

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: RM2 Radio Musti

0: और आप अपने मूड और मौसम को थोड़ा थोड़ा बदलते रहें. Keep on enjoying the music. Time for a break and getting back.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से.
2: RM2
1: Radio Musti.

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ पत्थर समझा था, पत्थर। मैं रास्ते से भटक गया था भगवान, भूल गया था कि तुम इस तरह भक्तों की परीक्षा लेते हो। पांडवों को दुख भूल गया, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा भूल गया, भूल गया कि राम का रूप लेकर तुम खुद 14 बरस वनवास काट चुके हो।
2: आज का ये दिन
0: मंगलवार 13 अक्टूबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नास्तिक 1983 की मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी पर फिल्माए गए नास्तिक।
2: पीछे मुड़के ना देख प्यारे आगे चल।
3: Music all day.

0: चलिए म्यूजिक चलता रहेगा, लेकिन डोंट फॉरगेट कि दिवाली के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। बस आपको अपनी टिकट्स खरीदनी है तो उठायो, उसके आप समझ जाएं कि कितनी सारी मस्ती, कितनी सारी प्लानिंग के बाद वो लम्हा हम और आप साथ जी पाएंगे। एंजॉय योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। और आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी कहानी यूं चलती जाती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप और हम हमेशा साथ साथ हैं इन द एवरी कॉर्नर। विकास आपके साथ 9 to 12 अभी के लिए। फिलहाल बात करें दिवाली की तो कुछ इस तरह।
1: Join the Radio Mercy team for a grand, unforgettable Diwali night. 14th of November at Balanchina Hall, rooftop Phoenix. Karenge masti, karenge dhamal. Who's joining the party? Ab agar ye hai sawal, to saath dene ke liye aa rahe hain Bollywood singers Vineet Singh aur Anita Bhatt. Bollywood ka music karenge rock and roll. Hoga international DJ, bajenge dhol. Also joining in our local DJs DJ Neil K and DJ Spikey V.
2: Krumanya Dance Academy aur honge selfie corners.
1: The Grand Diwali Night as from 6 PM at Valentina Hall, rooftop, Phoenix.
2: Radio Masti ke RJs ke saath hogi full-on entertainment.
1: Great surprises, Bollywood vibes, aur Diwali ki mithai ke saath mithas hi mithas. Tickets on sale on utaya.com. So book the date, 14th of November as from 6 PM. The Grand Diwali Night at Valentina Hall, rooftop, Phoenix with Radio Masti.
2: Grand Diwali Night 2026, sponsored by Valentina Hall in collaboration with Luxury Distributors Limited.
3: You're listening to RM2 or Radio Masti.

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैग।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: RM2 Radio Musti

और वहीं पर रागनी जी उन्होंने कहा कि वन ऑफ माई फेवरेट्स है, ये जो दिल तो दिल है, इट वॉज ब्यूटिफुल. नहीं, वहीं पर विभा जी आपको बहुत सारा प्यार फ्रॉम ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जितने भी लोग हैं, कहते हैं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन कौन से मास में, और फ्रेंड की लाडली बेटी के लिए प्लीज़ एक गाना चला दीजिए. हाँ ज़रूर ज़रूर. और वैसे मैं बाहर एक नज़ारा देख कर आया हूँ, क्या ब्यूटिफुल और नाइस एंड गुड, जहाँ पर बादल छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी सी बारिश कहीं कहीं पर. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि उतना ठंड कब लग जाए, मौसम के बदलते पता नहीं चलता. गुड मॉर्निंग जी, और कहते हैं अगला गाना स्पेशल टू अब्दुल इंसार बानो जी. हाँ ज़रूर, उन दोनों के लिए काम करते करते म्यूज़िक को ज़रूर साथ में लेके चलते हैं. अनुष्का जी आपको भी अब हेलो, नमस्कार. एक प्यासा गाना फॉर माधुरी अनिल मीला नारायण गायत्री एंड ऑल्सो गोज़ आउट टू माया सुबी अंजू, जितने भी लोग हैं, शहजाद भी हैं, मेबग माकम ने काम कर रहे हैं, उन सभी सुनने वालों के नाम. जहाँ पर कहा कि कुछ पुराने साले गाने भी हो जाएं जी, हाँ रेट्रो रिदम थोड़ी देर में. जयराज जी आपको भी अ बिग हेलो फ्रॉम द टीम. दिल की बात है, कभी कभी विवश हो जाता है, क्या करें, दिल की बात है.

0: टू रेडियो मस्ती। शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। कोलेवियो में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई लोजीटो मां की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर चिनिया द्वारा की गई है। उससे उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है और उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पेज पर लिखा कि हमारे देश की स्थिरता एक बहुमूल्य संपत्ति हैं और उसे उन्हें उम्मीद है कि समस्त जनता स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी। एलोजीटो मां के ऑपरेशन के लिए आज दोपहर भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम मॉरिशस पहुंच रही है। इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश जल्ला की निगरानी में ये टीम इस सर्जरी के लिए मॉरिशस आ रही है। वकील गामा वलाइदेन और असद पीरू अदालत में तुमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है। हालांकि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर उस पर पोसेशन ऑफ अ फायरआर्म विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की कोशिश के आरोप में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल की गोरखा इलाके में कल अचानक बाढ़ उतर आई जिससे कई मकान और पुल

0: बह गए। करीब 95 लोगों को बचाया जा सका है, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड पोंकोलविल न्यूवेलफॉन्स में 92 साल की 92 इयर्स ओल्ड बीबी अफरोज जहाली जो अफरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके बेटे जनाब नासिर जहाली के मकान रॉयल रोड पोंकोलविल न्यूवेलफॉन्स से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। लॉट नंबर 22 मोसलम मोगू में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्रीहानील रीगा जो पेथपुल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह नौ बजे इनकी पत्नी श्रीमती धनवंती रीगा के मकान लॉट नंबर 22 मोसलमा मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti. Radio.

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:11 हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आरएम टू रेडियो मस्ती में आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी माँ सबके जीवन में खुशियां एनर्जी भर दे। अब चलिए बिना देरी हम शुरू करते हैं हमारा रेट्रो रिदम शो। आपको नंबर तो पता ही है, अगर आपको अपने दिल की बात कहनी है या कोई डेडिकेशन है तो आप भेज सकते हैं मैसेज 5499124 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो कर सकते हैं 4028035 पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:24 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं रेट्रो रिदम के साथ। आप जानते हैं पुराने जमाने में गाने एक ही टेक में रिकॉर्ड होते थे, कोई ऑटो ट्यून नहीं होता था, कोई एडिटिंग नहीं होती थी, सिर्फ सुर और आवाज़। इसलिए उस दौर के गाने जो हैं सीधा आत्मा को जाके एहसास देते हैं और महसूस होते हैं कि आवाज़ें कितनी प्यारी हैं। चलिए जी अगला गाना सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, गुम है किसी के प्यार में।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti
3: क्या कहा?

0: प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: मेरी जागी तो है ये, तू क्या जाने, यही तो एक सूट है जो हर महीने की पहली तारीख को मेरी गरीबी छुपा लेता है। एक एक पैसा बचा कर बड़ी मुश्किल से सिलवाया ये मैंने। अरे ये सूट पहनकर राजा सचमुच का राजा लगता है। हाँ।
2: रहे झोपड़ों में, ख्वाब देखे महलों के।
1: अरे अच्छे दिनों के ख्वाब नहीं देखेंगे तो गरीब घुट घुट के मर जाएंगे।
0: मंगलवार 13 अक्टूबर को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मोहब्बत की आरजू 1994 की ये मूवी ऋषि कपूर और डैनी डेंजोंगपा पर फिल्माई गई मोहब्बत की आरजू।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:37 हो चुके हैं दोस्तों। बॉलीवुड में एक जमाना था जब गाने फिल्म की जान हुआ करते थे। लोग फिल्म देखने सिर्फ गानों के लिए जाते थे, और चाहे आर डी बर्मन हो, किशोर दा हो, रफ़ी साहब हो, लता जी हो, या इनके आशा जी हो, इनकी जो जोड़ी थी बहुत ही अलग थी। कहते हैं ना, इतिहास रचने वाली थी। और इतने सालों में, चाहे आप कह लीजिए 1940 से लेके आज तक,

ये आवाज़ें कहीं ना कहीं हमारे घर का एक हिस्सा बन चुकी हैं। चलिए जी, आपके जो मैसेजेस हैं वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अमिता जी अपने पापा को आज मिस कर रहे हैं बहुत, और रोहिणी, किरण एंड ऑल सिस्टर स्वास्थ्य, बबीता, बेबी, पूनम एंड वंदना सभी उनको मिस कर रहे हैं, और बस एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। आप पापा को मिस मत कीजिए क्योंकि हमेशा पापा साथ ही होते हैं। यलीश जी साथ दे रहे हैं और बहुत प्यारे से राजमा राइस की प्लेट दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच इतने लंच आवर में ये खाना दिखाने के लिए। फिया जी साथ दे रही हैं और एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं। ज्योति शादो बनारस से अपने पूरे परिवार और दोस्तों के लिए गाने की फरमाइश कर रहे हैं। सुदेवी जी बहुत ही प्यारे से फ़ोन कॉल के साथ सभी के लिए हैप्पी नवरात्रि लेकर आई हैं। डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, आपादू फैमिली रोशनवा से सभी इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। आप भी मैसेज कर सकते हैं, आपको नंबर पता ही है 5499124 पर, और आप कॉल भी कर सकते हैं।

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस, फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
0: RM2 Radio Musti।

0: रेट्रो रिदम 12:49 हो चुके हैं और साथ में अभी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ मीता जी, सीला, करुणा जी और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश लेकर आए हैं और साथ में ललित जी साथ में दे रहे हैं यूएसए से और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश लेकर आए हैं और सभी को कह रहे हैं हैप्पी नवरात्रि। प्रकाशवती जी साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश लेकर आई हैं, पर चलाएंगे एक एक करके गानों को इंजॉय करते रहिए। सपने साजन के अगर दिल कर रहा है गरबा करने का तो ये टाइम बहुत अच्छा है, घर में इंजॉय कीजिए, घर के काम जो कर रहे हैं करते रहिए।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलोजीटो मां को जीटू अस्पताल ले जाया गया है। एलोजीटो मां की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर। आज भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम मॉरिशस पहुंच रही है। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल जाएगी जहां मरीजा की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और सर्जरी की जाएगी। एलोजी को जरूरी इलाज देने के लिए 13 डॉक्टरों की टीम आ रही है। कल रात डॉक्टर सत्यानंद सिंह देवनारायण एमबीसी के जोनल टेलीविजन में थे। उन्होंने समझाया कि एलोजीटो मां ने अब तक कोई सर्जरी नहीं करवाई है। गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी। इसलिए सीईबी इस महीने से एक चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को जाया ना करें। सगायतों जुवाल के निधन को 30 से ज्यादा साल हो गए हैं। पीएमएसडी के इस राजनीतिज्ञ, पूर्व वकील और कूटनीतिज्ञ की वजह से देश के इतिहास में काफ़ी योगदान रहा है। ख़ासतौर पर उनके आर्थिक विजन और जनता से उनकी कुर्बत के जरिए आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विदेश में सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए और कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई है। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि कारतूम में ये हमले किए गए। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। मोसलमान सियाई मोटगू में 61 साल के 61 years old श्री अनिल रेगा जो पेट्रोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी धनवंती रेगा के घर मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। गांधी रोड लालमाची में 92 साल की 92 years old श्रीमती लीलावती कोलीचर्न पैदाइशी नाम रामेश्वर की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 64 साल के 64 years old श्री जयराज सुखवरिया जो विवेक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी कविता सुखवरिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचुआ की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9 AM। टागो स्ट्रीट खुशनुआ में 74 साल के 74 years old श्री तिमल सिंह लुबिन जो

0: कुमार और फ्यूअल में काम करती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे के बेटे विशाल लुबिन के घर टैगो स्ट्रीट खुशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm. RM2.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:10 हो चुके हैं और आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। कहते हैं ना, इतना पुराना ज़माने का गाना और फिर भी चल जाए तो बहुत से लोगों का तो दिल खुश हो गया होगा इस समय। एक तरफ तो ये टाइम जो होता है ना, ये होता है थोड़ा सा खाने पीने का और दूसरी तरफ आराम करने का, और साथ में ऐसे गाने चल जाएँ तो दिल तो खुश हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई शमशाद बेगम जी का एक गाना सुना दीजिए, तो हमने तो चला दिया। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5491294 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो कीजिए 4028035 पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Siddhi Vinayak Shop wishes you a Shubha Navratri. May Durga Ma bless you all. RM2
1: Radio Musti.
2: प्रकाशवती जी आपके लिए स्पेशली

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:25 हो चुके हैं दोस्तों, और ये दोपहर का टाइम जब ये कहते हैं ना, इसमें अपने फेवरेट कोई गाना चल जाता है तो आपके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, थैंक यू के। पर हम कहते हैं कि आप बस सिर्फ मैसेजेस कीजिए, कॉल कीजिए और बताएं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। मुझे याद है कि जब पहले टाइम में कोई शादियाँ होती थी तो उस समय एक कुछ स्पेशल गाने चलते थे और उस पर आपने ज़रूर डांस किया होगा, चाहे आता हो या नहीं आता हो, पर फिर भी ट्राई हर कोई करता था। तो हमारी बबीता जी कह रही हैं कि मैं अपने पति से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनके साथ हर वक्त खड़ी हूँ, और मेरे हस्बैंड का नाम है धर्मेंद्र और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे वो साथ रहें, इसलिए मैं एक गाना मांगना चाहती हूँ। तो मैं तो बोलूँगी भी आप दोनों का साथ बना रहे और हमेशा खुश रहे। उर्मिला जी इटली से साथ दे रही हैं और अपनी सिस्टर प्रीति प्रिया मालती तेगोश से साथ दे रहे हैं, और उनको ये बस इतना ही कहना चाहती है, हैप्पी नवरात्रि, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आयशा तेजल, तनवीर, अनिष्टा, तरश एंड रायन, रायना, कमला, कथोबोन से साथ दे रहे हैं और सिमला जी साथ दे रही और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। चलिए जी, वो वाला गाना चलाते हैं जिस पे थोड़ा सा डांस भी किया जाए और आपको वो जमाने याद आ जाए जहां पर कभी कहते हैं जब दर्द होता था दिल में, तो वो वाला कैसा होता था।
0: रेट्रो रिदम,
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: मुझे माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ पत्थर समझा था, पत्थर। मैं रास्ते से भटक गया था भगवान, भूल गया था कि तुम इस तरह भक्तों की परीक्षा लेते हो। पांडवों को दुख भूल गया, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा भूल गया, भूल गया कि राम का रूप लेकर तुम खुद 14 बरस वनवास काट चुके हो।
2: आज का ये दिन
0: मंगलवार 13 अक्टूबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नास्ते 1983 की मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी पर फिल्माई गई नास्तिक।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:38 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं रेट्रो रिदम के साथ में। और यहाँ पर एक ऐसा गाना चलने वाला है जो आपको कॉलेज और स्कूल के डेज को याद दिला देगा। और इस समय स्पेशली ये गाना जाएगा देव जी के लिए उनकी वाइफ की तरफ से, क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और प्लीज गाना जरूर चलाएगा। बिल्कुल चलाने वाले हैं। वीना जी के लिए नेक्स्ट गाना चलेगा साथ में। आज उनका बर्थडे भी है, तो हम सारी तरफ से MBC की टीम की तरफ से और रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से आपको विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और स्पेशली आपके हस्बैंड की तरफ से। तो हम तो कहेंगे हमेशा खुश रहो, इंजॉय करते रहो अपना बर्थडे। और दीपक जी कास्तल से साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इन गानों को। तो चलिए जी, ये गाना आप सबके लिए, याद कीजिए अपने वो दिन।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
4: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
3: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
4: हिंदी कविता है ना?
3: हाँ।
4: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
3: तुम और हिंदी कविता?
4: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश है।

0: चोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: टाइम चेक दोपहर के 2 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार राधा। पुलिस की भारी तैनाती के तहत इलजीटो माकोजीटो अस्पताल ले जाया जा चुका है। उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। आज भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम मॉरिशस पहुंच रही है। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल जाएगी जहां मरीजा की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और सर्जरी की जाएगी। इलजीटोमा को जरूरी इलाज देने के वास्ते 13 डॉक्टर आ रहे हैं। कर्रा डॉक्टर सत्यानंद सिंह देवनारायण एमबीसी के जोनल टेलीविजन में थे। उन्होंने समझाया कि इलजीटोमा ने अब तक कोई सर्जरी नहीं की है। गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम में गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसलिए सीबी इस महीने से एक चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को ज़ाया ना करें। बेल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातोमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया है। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातोमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। 30 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं जब से सर गायतों जुवाल का निधन हो गया है। वकील, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ की हैसियत से उन्होंने देश के इतिहास में बड़ा योगदान दिया है। ख़ासतौर पर उनके आर्थिक विजन और जनता के साथ उनकी कुर्बत के चलते इस संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। विदेश में सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए, कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि कार्टूम में यानी सूडान के नील नदी के पास खान स्थलों को निशाना बनाया गया। अब तक ना इजिप्शियन सरकार ना ही सूडानी सरकार ने टिप्पणी की है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार राधा।
2: NBC.mu. La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez. À la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
3: More music in the mix.
4: Aaj azadi hai.
5: Bombay Talkies.
6: Radio Musti.
7: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, वो time जहाँ पर हम आते हैं लेकर आपके लिए B Town की updates and some latest tracks. 2:11, second day of Navratri, आपके लिए शुभकामनाएं and good wishes तो हम every day पहुँचाते रहते हैं. 24/7 दिल से बस यही हमारी prayers होती हैं कि हमारे जो भी listeners हैं, जो भी आपकी मन की कामनाएं हैं, जो भी आपकी wishes हैं, वो फटाफट से पूरी हो जाएं और life में बस खुशियां ही खुशियां हो. और चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो आप आए हैं हमारा साथ निभाने, तो आपकी इस afternoon को सजाएंगे with some latest tracks and some latest Bollywood updates. मैं हूं फरी आपके साथ दोपहर के 4 बजे तक आपके लिए हम सजाए रखेंगे ये खूबसूरत म्यूजिकल कारवां. साथ देने के लिए शुक्रिया. एंड फॉर नाउ वी हैव स्पेशल विशेस, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
3: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं.
4: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे. आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं. MBC wishes you all a pious navratri.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: एंड वेल फ्रेंड्स, बी राउंड की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। एक्ट्रेस बिपाशा बासु लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर एक्टिंग का जादू बिखेरती नजर आएंगी। उनके हाथ अब एक वेब सीरीज लगी है और इसकी जो शूटिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बिपाशा बासु की बेटी देवी के जन्म के बाद से ही वो एक्टिंग से दूर है, मगर उनके फैंस के लिए अब एक गुड न्यूज है। एक्ट्रेस करीब 6 साल बाद अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने के लिए ऑल सेट और रेडी है। एंड आपको बता दें दैट वो हंसल मेहता की वेब सीरीज से जुड़ी है और जिसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। समाचार एजेंसी, जी हाँ, यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान बिपाशा बासु से बात करते हुए पता लगा कि बिपाशा बासु मशहूर फिल्म मेकर हंसल मेहता की नई सीरीज में एक अहम रोल में नजर आएंगी। अभी तक इस शो के बारे में ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई हैं। फिलहाल बस इतना पता चला है कि सनी कौशल और विशाल जेठवा भी इसमें नजर आएंगे बिपाशा बासु के साथ, और सीरीज का नाम भी अभी तय नहीं हुआ है। और हंसल मेहता की इस अनटाइटल्ड सीरीज को कश्यप कपूर और राघव राज कक्कड़ ने लिखा है और इसे ऑल माइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन के बैनर तले प्रभलीन संधू ने प्रोड्यूस किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और ये ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इसमें सनी कौशल नजर आने वाले हैं एक ईमानदार पुलिस का किरदार निभाते हुए, जो अपनी ईमानदारी और इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हुए सिस्टम के अंदर और बाहर की ताकतवर जो ताकतें हैं उनसे लड़ते नजर आएंगे। और इसमें बिपाशा बासु भी नजर आने वाली है इन एन अहम किरदार। सभी के लिए तो फॉर ऑल फैंस ऑफ बिपाशा बासु दैट्स अ गुड न्यूज। उन्हें देख पाएंगे हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लंबा ब्रेक लिया है और करीबन 6 साल बाद एक बार फिर नजर आने वाली है वो एक वेब सीरीज में। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये क्या होगी, कहानी कैसी होगी और उनका रोल लोगों को कितना पसंद आता है। एंड वेल फ्रेंड्स, ये हम जानते हैं कि आजकल तो OTT का ज़माना है। OTT पर इतनी सारी फिल्में, इतने सारे सीरीज़ रिलीज होते हैं और उन्हीं सीरीज़ में से एक का मुसाफिर कैफ़े जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। और चलिए उसी सीरीज़ का ये गाना आप सभी के नाम, चिकन फ्रॉम द फिल्म फ्रॉम द सीरीज़ मुसाफिर कैफ़े। ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़, बी टाउन की खबरें आप तक पहुँचाते हैं। मैं हूँ परी आपके साथ, दिन के 4 बजे तक आपका और मेरा साथ है। अगर साथ निभा रहे हैं आप भी, सो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: और चलिए दोस्तों एक बार फिर याद करते हैं दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर जिनका अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्म हाउस में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। एक्टर का निधन 75 वर्ष की आयु में हुआ और उनके अंतिम यात्रा में बॉलीवुड के कम ही सितारों ने शिरकत की। इस पर मराठी अभिनेता और फिल्म निर्माता प्रवीण तरडे ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार के दौरान और उसके बाद भी कई बॉलीवुड सेलेब्स शोक जताने उनके घर नहीं पहुंचे। इस पर मराठी अभिनेता फिल्म निर्माता प्रवीण तरडे ने एक इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड के लोगों का अंतिम संस्कार में शामिल ना होना नाना की महानता को कम नहीं करता। बॉलीवुड नाना से बड़ा नहीं और नाना एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। कुछ हजार किसान नाना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके शरीर से पसीने और मिट्टी की गंध आ रही थी और वो सारे किसान बॉलीवुड के इत्र लगाने वाले किसी भी व्यक्ति से कहीं या ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है। आगे अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी राय है कि धूले से आया एक किसान भी बॉलीवुड के नायकों से कई ज्यादा महान है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही नाना ने कब कहा कि वो बॉलीवुड से थे, नाना ने हमेशा कहा कि वो एक किसान थे। और अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मुझे शिकायत है, तो हाँ मुझे शिकायत है। बॉलीवुड के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए था। कम से कम जिन्हें नाना अपने दोस्त कहते थे उनको तो वहाँ हाजिर होना चाहिए था। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। यह है फिल्म अभिनेता और निर्माता प्रवीण तरडे जिन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। और चलिए यहाँ पर जैसे हमने कहा कि नाना पाटेकर ही विल बी मिस्ड क्योंकि बहुत ही महान व्यक्ति थे और जितने अच्छे एक्टर थे उससे अच्छे वो इंसान थे। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ज़रूर जुड़ी उनके साथ, लेकिन जैसे हमने कहा कि बॉलीवुड है और इसमें कई सारी बातें होती रहती है, लेकिन एज अ पर्सन नाना पाटेकर वॉज अ वेरी गुड पर्सन। जहाँ पर वो उनका नाम हमेशा सोशल वर्क्स के साथ जुड़ा, उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को हेल्प की है और साथ ही साथ बहुत सारे सोशल कॉजेज़ का वो हिस्सा बने हैं जहाँ पर उनकी मदद से बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ बदली है। तो जैसे यहाँ पर प्रवीण तरडे कहते हैं कि नाना पाटेकर बॉलीवुड से कहीं ऊपर थे और अभी के लिए तो दुख जता रहे हैं कि जो उनके दोस्त जिन्हें नाना अपना दोस्त कहते थे, दोस्त मानते थे इन बॉलीवुड, उन लोगों के ना आने से उनका दिल यहाँ पर काफ़ी दुखा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है इस इंटरव्यू के जरिए।
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
2: RM2 रेडियो मस्ती, मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
3: आज आजादी है
4: बॉम्बे टॉकीज
5: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती।
0: एंड वेल फ्रेंड्स, इट्स 2:33। यहाँ पर बी टाउन की खबरें, बॉलीवुड की खबरें तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, लेकिन सून विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली एज वेल। और RM2 रेडियो मस्ती आपके लिए लेकर आया है कुछ खास, कुछ स्पेशल।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
3: दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर वन एंड ओनली ड्राउन ब्रदर्स

0: और यही आशा करते हैं कि मां दुर्गा सभी पर आशीर्वाद बरसाती रहे। जरावन ब्रदर्स ऑपोजिट गवर्नमेंट स्कूल फ्लैट।
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: Radio Masti, your number one Bollywood station.

और चलिए दोस्तों, यहाँ पर वी हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंस ऑफ सनी देओल। सनी देओल की अपकमिंग फिल्म सूर्या अंत से आरंभ तक का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है और इसके साथ इसकी रिलीज की तारीख भी सामने आई है। बॉलीवुड स्टार सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्या अंत से आरंभ तक में एक नए अवतार में दर्शकों को चौंकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक्टर ने आज फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करके इसकी ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो दी हैं और साथ ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। फर्स्ट लुक का पोस्टर में वो काफी गंभीर और आक्रामक नजर आ रहे हैं और इसके अलावा सनी देओल ने ये भी बताया है कि ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है। मोशन पोस्टर को देखा जा सकता है और इसमें देखा जा सकता है कि सनी देओल उम्र दराज नजर आ रही हैं। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और वो सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं। उनका लुक काफी आक्रामक है। उन्होंने टी शर्ट पहनी है और पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ वो सच का पता लगाता है। पेश है सूर्या अंत से आरंभ तक। रिलीज हो रही है ऑन 20th of November 2026 सिनेमा घरों में। यस, द डेट इज 20th of November यानी कि 20 नवंबर को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। एंड ऑफ कोर्स गुड गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंस ऑफ सनी देओल। तो चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप, मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। वी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आपका प्यार आपका साथ भी बना हुआ है, सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए पेश करते जाएंगे। फॉर नाउ इट्स अरिजीत सिंह, निकिता गांधी की आवाज़ ही, आवन जावन फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती। एंजॉय दिस वन।

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: टाइम चेक 3 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम जीतू अस्पताल पहुंच गई है। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल आ गई, जहां मरीजा एलुजी टोमा की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और सर्जरी की जिसके बाद सर्जरी की जाएगी। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलुजी टोमा को जीतू अस्पताल ले जाया गया। वो ICU में है और उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। एलुजी टोमा को जरूरी इलाज देने के लिए 13 डॉक्टरों की टीम आई हुई है। पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा खाद्य सुरक्षा पर इनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई, ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसलिए सीबी इस महीने से चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगा। बिल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमान को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। विदेश में रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। मुसाफिरों के ठहरने वाले हॉल में आग लगी, एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी हुए। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई और 308 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में शोक समाचार। मौसलमा सीताराम अंगीता वाकवामी 62 साल के 62 years old, श्री रूप सिंह शत्रुघ्न, श्री रूप सिंह शत्रुघ्न जो गौतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, और भूमि मंत्रालय में पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस अफसर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है कल 11 बजे इनके घर मौसलमा सीताराम अंगीता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टमोरवाट 11 AM। डॉक्टर इड्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजांस रोजहिल में 77 साल के 77 years old, श्री राजा सीवेन गेंगान, श्री राजा सीवेन गेंगान जो सीवेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी बुध को 11 बजे इनकी पत्नी विनोदा गेंगान के घर डॉक्टर इड्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजांस रोजहिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: On NBC Play and NBC.mu. More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: बोले।
1: चलिए भोलेनाथ का नाम लेते हुए आपका हम वेलकम कर रहे हैं। 3:08 साथ दे रहे हैं आप ऑन आरएमटू रेडियो मस्ती। वेल दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ, एंड नवरात्रि भी है तो आज सेकेंड दिन, और इस सेकेंड दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज, बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फॉर नाउ वी हैव स्पेशल विशेस फॉर ऑल आवर लिसनर्स।
2: बराबर कोई नहीं। यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वादा रहा और वादा तो ये करते हैं कि नहीं तोड़ेंगे हम आपका दिल आपका साथ भी कभी नहीं छोड़ेंगे और बस ऐसे ही बॉलीवुड की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे. आफ्टरनून टाइम, इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ. और यस दोस्तों, फिल्म नखरे वाली की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. ये मूवी 30th October 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. और फिल्म में कौन नजर आएंगे, कहानी क्या होगी, चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं. तेरे इश्क में और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक का आनंद एड राय की नई फिल्म नखरे वाली की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. खास बात यह है कि इस बार फिल्म को राहुल शंकलिया डायरेक्ट करने वाले हैं. वहीं जियो स्टूडियोज आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इसकी कहानी दिव्या निधि शर्मा ने लिखी है. बता दें कि मेकर्स ने नखरे वाली का ऐलान साल 2024 में किया था और 2025 के वैलेंटाइंस डे पर इसे रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. इस फिल्म के जरिए मेकर्स नए कलाकार अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव को लॉन्च करने वाले थे. हालांकि रिलीज में देरी के चलते

अंशक को इससे पहले आलिया भट्ट की फिल्म डोंट बी शाय में देखा जा सकेगा और अब लगभग 1.5 साल बाद फिल्म नखरे वाली की नई रिलीज डेट सामने आई है एंड फाइनली ये फिल्म 30th October को रिलीज होने जा रही है सिनेमा घरों में. सो देखिए इस फिल्म को लग तो रही है काफी प्रॉमिसिंग एंड अब लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार. RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: And well, friends, it's 3:34. अभी के लिए तो ऐसे ही कुछ beautiful songs आपके लिए हम लेकर आए हैं. 2 से लेकर 4 बजे तक latest tracks हम आपके लिए चलाते हैं. और कुछ हमारे listeners जो पुराने गाने पसंद करते हैं, कुछ listeners जो नए गाने पसंद करते हैं. And latest tracks में भी कुछ ऐसे tracks आए हैं जिन्हें हम बार बार सुनना पसंद करते हैं. And this was one of those songs जिसे आप कितनी भी बार सुन ले आपका दिल नहीं भरता है. And सैयारा फिल्म का ये गाना था, आप सभी के नाम. And magical voice of Jubin Nautiyal, सभी listeners के नाम. तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी और लेकर आई हूं आपके लिए बॉम्बे टॉकीज. एंड फॉर नाउ इट्स टाइम टू रीड आउट आपके कुछ मैसेजेस, डेडिकेशंस जो आपने पहुंचाए हैं 5499-1294 पर. सो लाल माटी से देवसेन हमारा साथ दे रहे हैं, वॉर्म वेलकम. नेक्स्ट ट्रैक होगा आपके लिए. एंड यहां पर रोशनी आई है अपनी गुड विशेस के साथ.

कहती है होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड और गानों को आप एंजॉय कर रही हैं एंड थैंक यू फॉर द सॉन्ग साहेबा. मुसाफिर कैफे का ये गाना आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब. सो आई एम श्योर दैट ऐसे ही कुछ स्वीट ट्रैक्स हम चलाते रहेंगे जो आपके दिल को लुभाते रहेंगे एंड आपके ऐसे ही प्यारे मैसेजेस हम तक पहुँचते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच रोशनी, साथ देने के लिए शुक्रिया. अगला गाना होगा आपके लिए. साथ ही यहाँ पर कहते हैं अगला गाना हो जाए फॉर अब्दुल एंड सायरा बानो जो हमारा साथ दे रहे हैं. बिल्कुल जी, वाई नॉट. बहुत ही प्यार से डेडिकेट करेंगे अगला गाना आप दोनों के नाम. साथ ही यहाँ पर गोविंद रघुनंदन फ्रॉम वाकवा हमारा साथ दे रहे हैं. आप लवली आफ्टरनून एंजॉइंग योर टी टाइम एंड जो अगला गाना है होगा फॉर योर ब्यूटिफुल वाइफ वेदा, फॉर बेटी दीक्षा एंड आपके दो बेटे युधिश एंड योगेश, सभी रघुनंदन परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. हैव अ वंडरफुल टाइम. साथ ही यहाँ पर जो अगला गाना है इसे हम स्पेशली डेडिकेट करेंगे फॉर ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज जो हमारा साथ दे रहे हैं. अभिजीत सावंत, यस आपको ये नाम तो याद ही होगा, द फर्स्ट विनर ऑफ इंडियन आइडल और आज भी उनका मैजिक वैसे ही बरकरार. एंड वी हैव अ ब्यूटिफुल सॉन्ग उन्हीं की आवाज में, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट लेकिन विद अ ट्विस्ट. इसे हम डेडिकेट करेंगे फॉर ऑल द लिसनर्स, स्पेशली फॉर ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज जो साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. RM2 रेडियो मस्ती.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: और चलिए दोस्तों, इट्स 3:54 एंड इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. जाते जाते यहाँ पर वीना जगेसा हमारा साथ दे रही हैं. आप बेलवी मोहल से कनेक्टेड है रेडियो मस्ती के साथ और प्यारा सा गाना फॉर टू सिस्टर्स ललिता एंड कुमारी. और उनकी तरफ से आप स्पेशल विशेज दुर्गा पूजा के लिए पहुंचा रही हैं फॉर ऑल द लिसनर्स. सो थैंक यू सो मच वीना जी. और आपके लिए जो एक ब्यूटीफुल गाना है हम जरूर डेडिकेट करेंगे. साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं मिस्टर प्रीतम. हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया. गाना आपके नाम प्रेमिला जी, आप हैप्लेन द पपाए से. अगला गाना डेडिकेट करना चाहती है फॉर हस्बैंड रंजीत एंड साथ ही साथ हमारे लिए भी. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच. साथ देते रहिए. और नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय. परी तो चली लेकिन आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स. मंडे आफ्टरनून है, आपकी इस आफ्टरनून को बनाएंगी वो खास एंड स्पेशल. सो उनका साथ निभाइए. मुझे दीजिए इजाजत. मुलाकात कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज.

0: Check your time, it's already here. 4 p.m. आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ. नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. रात के 3 बजे से लोग CWA दफ्तरों के सामने खड़े हैं ताकि वे वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ उठा सकें.

0: एप्पल और रुजिल के दफ्तरों में सैकड़ों लोग कह सकते हैं कि हजारों लोग वहां पर मौजूद थे। ए से एम अक्षरों से शुरू सरनेम वाले लोग वहां पर आज सुबह से गए थे। इस स्कीम के तहत 15,000 रुपए की कीमत पर सरकार वाटर टैंक और वाटर पंप दे रही है। भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की है। एलुजी टोमा की सर्जरी के सिलसिले में उन्होंने बातें की हैं। ये टीम हवाई अड्डे से अस्पताल गई है और मरीजा की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद सर्जरी की जाएगी। पुलिस की भारी तैनाती के तहत आज दिन के दौरान एलुजी टोमा को जीटू अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार वो आईसीयू में है और उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर उनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। बेलनरीमान कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। और विदेश में रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। मुसाफिरों के ठहरने के हॉल में आग लगी। एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई और 308 लोग घायल हुए थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए।
1: On NBC Play and NBC.mu. Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.

0: बिल्कुल जी, कैसा मोर आया कि उथई दिल छोड़ के हम आ गए हैं, लेकिन ढेर सारा प्यार लेकर आ गए हैं। ऑन द वेव्स ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती, जहां पे गणेश आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए। सो माय डियर लवली, प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, चेक योर टाइम। स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं और आज है मंडे 12th of October 2026। जहाँ दोस्तों अभी तो अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था और 12 दिन कैसे गुजर रहे पता ही नहीं चला। सो माय डियर लवली पीपल आउट देयर, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। आई नो इट्स मंडे, अभी तो आपने अच्छा सा वीकेंड गुजारा है अपनों के साथ। आज नवरात्रि की सेकंड डे है एंड बहुत सारे कुछ चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में। यस, बट ऑन मंडेज मंडे ब्लूज भी तो हम फील करते हैं, इसीलिए हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गाने तराने जो स्पेशली आप लोगों को हम ऐसा महसूस करा दे कि इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे। सो गुड वाइब्स लेकर, गुड म्यूजिक लेकर, ढेर सारा प्यार लेकर हम आ गई है। हे गाइज, इट्स मंडे, जस्ट चिल।
1: RNT Radio Mustang.

0: पहली बार मॉरिशस में भजन जैमिंग को दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है एक जबरदस्त और लाइवली म्यूजिक फेस्ट एवरी इवनिंग आज फ्रॉम 7 PM 29th of October को भजन जैमिंग के पायनियर्स बैक स्टेज सिबलिंग्स 30th of October को लोकल आर्टिस्ट का शानदार लाइनअप यूफोरिया क्रू हार्मनी ऑन अवनी और अभिनव शंकर आर्या शिवाइब और कोविला द आर्टिस्ट एंड ऑन द 31st of October को भाविक आर्या और गौरी माधुरी की खास जोड़ी संगीत भक्ति और ऊर्जा से भरी शाम का हिस्सा बनिए टिकट्स अवेलेबल ऑन ticketbox.mu और कॉल ऑन 5508-3602
1: एगो यात्रा के मतलब है नवा अनुभव अपन संगे वक्त बिताई के और हर पल के मजा ले के और कबो कबो एगो बेहतरीन बिजनेस अवसर के फाइनलाइज करे के भी उहे खातिर कोनो भी अनजान परेशानी के इस सब खास पल के मजा खराब नहीं होई दी है सिकुम के स्पेशली डिजाइन ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान पर भरोसा करे जिकर से अपन यात्रा बेफिक्र होके सकब करे यात्रा के पूरा मजा ली है सिकुम तोहर ध्यान रखी हमनी से संपर्क करे या हमनी से भेंट करे खातिर sikkim.mu पर जाई है नियम आ शर्त लागू बाटे सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
2: सिकुम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
3: RM2 रेडियो मस्ती
4: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: RM2

थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए. ऑन आवर वन टू रेडियो में से 4:26 हो चुके हैं. टू ऑल दोस हु आर हिटिंग द रोड ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली मेरी जान, आराम से गाड़ी चलाने ना, एंड बस की निशा का साथ यूं ही देते रहना ऑन रेडियो मसीन योर रफ्तार वाइब्स, जहां पे हम आपको लेके जाते हैं अपने फिल्मी राइड्स पर.

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: to Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
5: वेल गाइस, चेक योर टाइम, 4:40 हो चुके हैं और शार्प, ही इज ऑन टाइम। यस, हमारे स्पोर्ट्स गुरु ऑलरेडी हियर इन द स्टूडियो, माइक ऑन हो चुके हैं और हम तो कहेंगे शुरू हो जाइए भैया जी, आज तो हम रेडी है सुनने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अरविंद जी।
6: हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं सोच रहा था आज आऊँ या ना आऊँ, आई हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, तो फिर से मैंने सोचा नहीं, अगर मैं नहीं आऊँगा तो Ginisha will have so many things to say कि जब लिवरपूल की हार हो गई 3-0 से तो हम लोग भाग गए। Anyway, जो हो गया सो हो गया, they deserved to lose। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। City was a better team after the dismissal of Gravenberch, और बहाना नहीं बना रहे हैं, but लिवरपूल एकदम पिघल गया उसके बाद, so they lost, और they lost against the league leader, है? लीग लीडर मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह नहीं है, वो लीग लीडर है।
5: अच्छा, ओके, सो डबल मतलब दो बार बोलना पड़ा है ना, लीड।
6: अब आज सुबह पता नहीं मुझे याद है या नहीं मैंने लीग टेबल का पोजीशन दिखाया है या नहीं अभी तक, बट इट्स गुड वी गो थ्रू दैट इससे पहले कि आज के मैच पर चर्चा करें। सो लीडिंग 6 out of 6 मैनचेस्टर सिटी 18 points, और आर्सेनल ने एक मैच हारा है, तो दैट मीन्स आर्सेनल के पास है 15 अंक, और गोल डिफरेंस भी देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी इज वेल अबव 11, आर्सेनल 15, गोल डिफरेंस ब्राइटन का है 13। कैन यू इमेजिन, देयर गोल डिफरेंस इज बेटर दैन मैनचेस्टर सिटी। ब्राइटन जो अभी तीसरे पोजिशन पे है, थर्ड पोजिशन विथ 13 points। ब्रेटफोर्ड सरप्राइजिंगली इनफ, ब्रेटफोर्ड फोर्थ पोजीशन पे हैं, उसके पास हैं 10 अंक, जबकि पांचवें पोजीशन पे हैं एवर्टन, उसके पास भी 10 अंक है, चेल्सी के पास भी 10 अंक। कमिंग नेक्स्ट लीड्स, हल सिटी और लिवरपूल। लिवरपूल 9th पोजीशन पे हैं विथ 9 points, ओके, 9th पोजीशन 9 points। पोजीशन और
5: पॉइंट्स में बहुत फर्क है,
6: नहीं बराबर है, बराबर है।
5: अच्छा,
6: 9th पोजीशन 9 points,
5: ओके,
6: ठीक है। और ऐसे ही बराबर है और एक,
5: क्या,
6: मैनचेस्टर यूनाइटेड,
5: और
6: 6 मैच खेलकर उसके पास है 6 अंक,
5: ओके, कोइंसिडेंस,
6: 13th पोजीशन,
5: ओके,
6: 13th, ओके, जबकि नीचे स्पर्स कोवेंट्री और फुलहम, ये लोग रिलीगेशन जोन में है। स्पर्स ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ मैच ड्रॉ किया था। सो आज कोवेंट्री न्यूकासल यूनाइटेड, इस मैच का क्या इम्प्लीकेशन है? न्यूकासल यूनाइटेड इज 11th, उसके पास है 8 points, तो आज अगर अपना मैच जीतता है तो दे कैन क्लाइंब ऑल द वे टू फोर्थ पोजिशन, क्या बात है, 8, 9, 10, 11, हाँ फोर्थ पोजिशन पे आ जाएंगे, और अगर ड्रॉ भी हुआ सो दिल गेट 9th पोजिशन पे आ जाएंगे, लिवरपूल एक कदम नीचे आ जाएगा। सो जो भी हो आज लिवरपूल एक कदम नीचे आएगा, क्योंकि न्यूकासल ऊपर जा सकता है अनलेस दे लूज, क्योंकि उनके सामने है कोवेंट्री की टीम 3 points इन द रिलीगेशन जोन। सो न्यूकासल यूनाइटेड को इस लिवरपूल के इस गलत रिजल्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस गलत रिजल्ट का फायदा उठाना होगा। स्पेन के ला लीगा में आज लेवेंटे वर्सेस एफसी सेविला, फिर इटली के सीरी आ में अटलांटा वर्सेस वेनेजिया, टोरिनो यूडिनीज़, ये आज के मैच हैं। कुछ फ्रेंडलीज भी आज खेले जाएंगे, ब्राजील के सीरी आ में भी मैच हैं, तो ये आज और कल से गेट रेडी फॉर द बिग वन, यूईएफए चैंपियंस लीग स्टेज, जहां पर आर्सेनल लिल का स्वागत करेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा कल अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, ए वे मैच होगा ये मैनचेस्टर यूनाइटेड

0: यूनाइटेड के लिए, फिर कुछ अन्य मैचों में बायर्न म्यूनिख विकिंग, विलारियल नापोली, ये कल के कुछ मैच हैं। वेंसडे मैच लिवरपूल एवे होगा एलएएस की टीम के खिलाफ, मैनचेस्टर सिटी पेरिस सेंट जर्मेन का स्वागत करेगा, और इनमें और इंटरेस्टिंग मैच अगर देखें तो फेयेनोर्ड कोमो, दैट्स आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इन सब पर कल और परसों आपको बताएंगे, और आर्टेटा ने बताया कि चैंपियंस लीग को वो बहुत सीरियसली ले रहा है। एल्स टेनिस में भी काफ़ी कुछ हुए वीकेंड के दौरान, चाइना ओपन में देखा जाए, शंघाई मास्टर्स भी जारी है। शंघाई मास्टर्स के राउंड ऑफ 32 में आज उग अलियासिमे ने कारेनो बुस्ता को हराया, पहला सेट हारने के बाद, जीतने के बाद सेकंड सेट हार गया लेकिन तीसरा सेट जीत गया। फिर राउंड ऑफ 32 में भी सिटसिपास की जीत, तो उसने फ्रिट्स को हराया। बर्ग्स की जीत हुई अल्काराज पर, सो अल्काराज इज आउट, कैन यू इमेजिन। अभी हाल ही में उसने टोक्यो मास्टर्स जीता था, टोक्यो से शंघाई में वो हार गया। देन वी हैव पुल और वाशिरो के बीच मैच अभी जारी है, रूड अपना मैच जीत गया चेन के खिलाफ, जुदार ने लेहेका को हराया, मेदवेदेव जीत गया अगेंस्ट व्यक्सीना। सो इंटरेस्टिंग मैच कल, इन सभी मैचों पर आपको रिजल्ट देंगे। और क्रिकेट में जैसे कि वीकेंड के दौरान आप लोगों को बताया, इट्स गुड गोइंग फॉर द इंडियन टीम, जिसने दूसरा मैच जीता अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, सो 2-1 फॉर टीम इंडिया। अभी दो मैच और खेलने होंगे फॉर इंडिया, अभी के लिए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मैच खेले जा रहे हैं। सो ये रिजल्ट भी आप लोगों को देंगे ज़रूर। और इधर आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं और साथ साथ में कुछ कॉम्पिटिशन्स भी, जैसे आज वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन शुरू हुआ बिटवीन द स्कूल्स ऑफ द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, और सेमीफाइनल अगले आने वाले दिनों में होंगे, थर्सडे को फुटबॉल टूर्नामेंट, इस पर भी आपको डिटेल्स देते रहेंगे। और लोकल स्तर पर भी जो रीजनल लेवल पर काफ़ी मैच खेले जा रहे हैं, दिवाली इज अप्रोचिंग, इस पर नतीजे जो आएंगे आपको देंगे। और लेट्स सी कहां पर क्या कुछ होना, जैसे सगाईतों जुवाल चैलेंज कप में मालेब ए टीम की जीत हुई, ये आज सुबह हम बताना भूल गए थे। सो हियर वी आर, दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी,
0: वेलकम।

खूबसूरत है खूबसूरत गाने हम लेकर आए हैं ऑन दिस लवली मंडे आफ्टरनून. जी हाँ, 4:55 हो चुके हैं, लेकिन इट्स टाइम कि हम अनाउंस कर ले कि आज का लकी विनर कौन है जो आज जीत रहे हैं वाउचर वर्थ 1500 रुपीज, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज. जरा दिल थाम के बैठे क्योंकि हम अनाउंस करने वाले हैं कि किसको मिला है ये वाउचर जो आपको ऑफर किया जा रहा है फ्रॉम सेंटर पॉइंट. जी हाँ, हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल कि अक्षय खन्ना का नाम जो कि इन द मूवी धुरंधर, और वॉज हिज नेम. सो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया और गलत जवाब. एंड द राइट आंसर इज रहमान डकेट. यस, जी हाँ, द नेम ऑफ अक्षय खन्ना इन द मूवी धुरंधर इज रहमान डकेट. सो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन आज के लकी ड्रॉ में हमारा लकी विनर है जिनका नाम निकल आया है हमारे इस लकी ड्रॉ में, नाम है उनका चंडिका देवी हीरा. So congratulations my sweetheart, you are the lucky winner. जहाँ पे आपको मिल रहा है a voucher worth 1500 rupees offered to you by Centrepoint. So my dear lovely listeners, get ready to celebrate the magic of Dandiya with Centrepoint this Saturday 17th of October. So you experience an evening of vibrant colors, festive beats and even the unforgettable moments at Centrepoint Triano as from 6 PM. And here's your chance. Yes, जहाँ पे हमारी चंद्रिका ने जीता है 1500 का वाउचर, और कल आप भी जीत सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती, जहां हर ताल में है जोश और जश्न और हर कदम में है रंग. जी हां दोस्तों, सेंटर पॉइंट डांडिया नाइट, वन इवनिंग वन रिदम, एक्सपीरियंस इट लाइव. बिल्कुल जी, और वैसे ही आप हमारे साथ ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग चंद्रिका जी, एंड यू गोना गेट योर वाउचर थ्रू पोस्ट. हाँ जी, एमबीसी आपको जरूर भेजेगी. सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस.

Ninja. The Vagabond or Ninja.

वेल गाइस, चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली जो है 5:24। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मैसेज जहाँ पे की निशा साथ दे रही है विद दिस ब्यूटीफुल एंड मस्मराइजिंग गाने। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त एंड लवली गानों का सिलेक्शन। मंडे 12 ऑफ अक्टूबर टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे माय डियर, सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, एंड हियर वी गो, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के, चुप क्या चाहे।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
1: Well guys, check your time. हाँ जी, टाइम बीता चला जा रहा है और फिलहाल के लिए एवरी डे सेम टाइम ऑन रेडियो मस्ती हम आपको देते हैं कुछ लेटेस्ट फैशन टिप्स. और फिलहाल के लिए हम बच्चों के लिए कुछ फैशन टिप्स लेकर आए हैं, किड्स के लिए नवरात्रि फैशन टिप्स. जहाँ से नवरात्रि में बच्चों को भी दीजिए एक सुपर क्यूट और ट्रेडिशनल लुक. और हम तो बस कह सकते हैं कि लिटिल गर्ल्स के लिए जो है कलरफुल चनिया चोरी विव मैचिंग बैंगल्स, और लड़कों के लिए कुर्ता पजामा विव स्टाइलिश जैकेट, ब्राइट कलर्स, कंफर्टेबल आउटफिट्स और क्यूट जो मोजरी होते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं ना उनका फेस्टिव लुक. बस याद रखें कि फैशन के साथ साथ कंफर्ट भी हमेशा ज़रूरी होता है, सो ताकि लिटिल वंस एंजॉय करें और गरबा और दांडिया फुल एनर्जी के साथ वो एंजॉय कर सके. सो वेल विशिंग ऑल ऑफ यू नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी हमेशा आपको खुश रखें.
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

0: नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
3: RM2

पेश हैं समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। गोली से जख्मी एलोजी टुमा की सर्जरी करने के लिए भारत से 13 डॉक्टरों की टीम मॉरिशस में। हवाई अड्डे से सीधा जीटू अस्पताल जाकर डॉक्टरों ने मरीजा की हालत का लिया जायजा। प्रधानमंत्री खुद एलोजी टुमा के मामले पर निगरानी रख रहे हैं। आज उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की और घायल महिला की स्थिति पर जानकारी ली। वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम से फायदा उठाने के लिए रात 3 बजे से CWA दफ्तरों के सामने लोगों की लंबी कतारें। भूमिगत जलाशयों की नई फहरिस्त आम ताकि नए जल स्रोतों को विकसित किया जा सके। आज कृषि उद्योग मंत्री ने मुख्तलिफ साझेदारों से की मुलाकात। और विदेश में सूडान में हमले, 72 नागरिकों की मौत। नमस्कार, आदाब। किम्स हॉस्पिटल से भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम आज दोपहर बाद मॉरिशस पहुंची। उसने जीटू अस्पताल में एलोजी टुमा की हालत का जायजा लिया। जुमे की रात की घटनाओं के चलते मॉरिशस सरकार ने भारतीय डॉक्टरों की मदद की मांग की। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल गई जहां मरीजा की स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस की भारी तैनाती के तहत

0: e lo dito ma co gito ospedal le chakea sintiamo tu caruna la lu
1: भारतीय डॉक्टरों की टीम पौने तीन बजे डॉक्टर राकेश ज्वाला के नेतृत्व में पोर्टवी के जीतू अस्पताल पहुंची, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू सहित अन्यों द्वारा उसका स्वागत किया गया। भारतीय चिकित्सा टीम में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के एक सर्जन, एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट तथा गहन चिकित्सा के एक विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक शामिल हैं। डॉक्टरों की टीम इमारत की दूसरी मंजिल पर गई, जहाँ उन्होंने मरीज एलोजी तोमा को देखा। शुक्रवार शाम से विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती एलोजी को कुछ समय पहले जीतू अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में एलोजी के परिजन उसके स्वास्थ्य की जानकारी पाने के लिए इंतजार में थे। करीब 25 मिनट से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद भारतीय डॉक्टरों की टीम प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए ट्रेजरी बिल्डिंग के लिए रवाना हुई।
0: एलोजी तोमा की हालत पर स्पष्ट जानकारी देने के लिए भारतीय डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मरीजा के पति भी हाजिर थे। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारत के प्रति आभार प्रकट किया, जिसने इतने कम वक्त में एक टीम मॉरिशस भेजी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलोजी तोमा को बेहतरीन सेवा देने के लिए सभी मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने मॉरिशनों से मांग की कि वे सब्र से काम लें, किसी भी तरह की अनुचित हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोनाथन तोमा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल उनकी पत्नी की सलामती है। प्रधानमंत्री और जोनाथन तोमा को सुनते हैं।
2: Qu'il venait dans un surgeon, tout à l'heure. Et je fais l'affaire pour toi qui pourra me vous pas réaliser. Ils pensent que je fais une opération. Une question, follow-up après. Souvent, ici, notre église à bout là, souvent, tous les autres équipes de l'Ubini là. Le porteur de renseignement avec mon médecin, depuis ici même avant, là, je viens, je fais le premier assessment. Là, je vais faire l'opération. Et jusqu'à l'air, c'est vrai qu'il paraît qu'il baleine tout ce cervical bone. Je ne peux pas paraître un gros dommage là. Je vais faire des outils en cours, tensionner un dommage au côté artère, etc., etc. Après ça, je vais faire l'opération. Et moi, je me dis pas. Il y a une affaire, on va prendre la médecine. Pour les affaires, je dis first, do no harm. Parce que bien qu'on balade, si dans le tiers, il fait plus de masse un coup là. Ils ont bien, une grande expérience que je vais faire. Donc c'est ça que je vais faire. C'est un peu j'ai envie de rassurer que tout le monde qui est capable de faire, nous faire. Parce que ce qui est arrivé là, pas de chez arrivé. Quand tout le monde s'en a pour ça. Et on ne peut pas faire un appel au calme. Je me dis, moi, je peux décrire cette situation là. Je vais donner l'occasion. Au lieu de penser à une madame et un petit enfant, puis ce monsieur-là, pour essayer de trouver une bonne solution, elle avait roulé en flamme, monsieur. C'est malheureux, mais il dit comme ça. Mais mon père l'appelle après, il a dit, mais il dit, oui, puis quand même, il faut citer le Facebook. Faut citer. Qui s'en va pas accepter. Je finis de dire, je finis pas par sauter après. Mais ça, elle m'a pris sa responsabilité. Maman, on sort d'un pays. Il ne faut pas qu'à laisser payer des droits pour un petit peu du monde. Ce n'est pas acceptable ça. Et nous ne pouvons pas le savoir.
3: Même moi, je ne peux pas attendre. Ce n'est pas un DPD ou même je peux suivre. Je peux faire ce suivi. Je ne finis pas un plan. Je finis pas un plan. Comment je peux faire cette intervention-là. Je me finis, je me retique, là, je me rends compte. Et tout de suite, comment je finis, je ne peux pas perdre le temps. Je suis déjà. Nous devons aller, excuse-nous, nous devons aller pour nous capables de sauver la béatifie. Et nous extra satisfaits, nous remercions beaucoup ma ministre, M. Anne Bichou, M. le Premier ministre, ma députée dans l'endroit. Je tout, il y en a trop beaucoup. Nous connaissons la population.

0: soutenir Yaman, je soutenais Yaman pour qu'il y ait beaucoup de messages, beaucoup de notifications contre mon téléphone. Parce que c'est pas facile pour moi dire pour répondre un par un. Mais mon remercie sur tout. Merci pour toute la prière. Et voilà, je mets tout dans la main pour Dieu, parce que la foi est une grande affaire. Ouais, comment vous dire dans tout mon interview, nous pouvons aller, nous pouvons aller aussi, mais nous pouvons la guerre, nous pouvons manifester. Nous n'avons pas qu'un surprise qui est capable, qui ne peut pas prendre la nuit, qui pourrait retourner dans l'ordre. Correct. Et fini, arrive ce qui arrive. Nous sommes sur la santé. Après, là, nous avons des temps parce qu'il y a un long chemin pour nous rester. Et pour petit, vous êtes solide, vous avez la tête aux épaules. Plus important pour moi, c'est mon banane retour ma casse.
1: कौन लिव्यू में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की सलाह पर आज पुलिस सर्जन टकू रुजिल जिला अदालत के सामने पेश हुए. उन पर पोसेशन ऑफ फायर आर्म विद इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ का अस्थायी इल्जाम दर्ज है. इसके अलावा फायर आर्म्स एक्ट की धारा 37(1) का उल्लंघन करते हुए उन पर यूजिंग फायर आर्म टू इंटिमिडेट तथा क्रिमिनल कोड की धारा 239(1) के उल्लंघन में इनवॉलंटरी वाउंड्स और वंस एंड ब्लोज बाय इम्प्रूडेंस के नए अस्थाई आरोप दर्ज हैं. माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में दूसरा स्वरूप है. नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है. माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, धैर्य, ज्ञान और भक्ति की देवी हैं. उनकी पूजा करने से भक्तों के मन की शांति मिलती है और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है. करुणा लालू.
2: श्रद्धा, भक्ति और शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है. इसके दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है. नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों और पूजा स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है. श्रद्धालु व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा से सुख शांति, समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.
3: श्री राम कृष्ण मंदिर होस्टे कांगुब में पूजा कर रहे हैं. आज बहुत से लोग पूजा पाठ में आए हुए हैं और इस 9 दिनों में लोग बहुत भक्ति भाव से रहेंगे, अपना आचरण पर ध्यान देंगे, सब कुछ पर ध्यान देंगे और पूजा पाठ में लीन रहेंगे, दुर्गा माँ की पूजा करके आशीर्वाद पाएंगे.

0: अकाल प्रथम रात्रि के दौरान घुसते कि श्री राम कृष्ण मंदिर में मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मां शैलपुत्री की पूजा हमें जीवन में दृढ़ रहने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है। उनकी पूजा करने से भक्तों को धैर्य, आत्मविश्वास और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः प्रत्येक स्वरूप शक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा का संदेश देता है। ये त्यौहार धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है।
1: पवित्रता, स्वच्छता, जहां पर पवित्रता है, जहां पर स्वच्छता है, वहां पर एकता है, यूनिटी। जहां पर स्वच्छता वहां पर एकता, और जहां पर एकता यूनिटी वहां पर आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। परिवार का मतलब है जहां पर ट्रस्ट, विश्वास है, और जहां पर आदर है, सम्मान है। और जहां पर दोनों है वहां पर परिवार है, और वहां परिवार में स्वयं माता वास है।

नवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि सत्य और अच्छाई की हमेशा विजय होती है तथा बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। ये पर्व महिलाओं के सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख एवं कठिनाइयों को दूर करें तथा पूरे देश में शांति, प्रेम एवं सद्भाव बनाए रखें।

0: सुबह रात के 3 बजे से लोग CWA के दफ्तरों के सामने खड़े हैं ताकि उन्हें वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ हो। ए से एम हरूफ से शुरू सरनेम वाले आज सैंपल और रुजिल में थे। इस स्कीम के तहत 15,000 रुपए की लागत पर सरकार वाटर टैंक और वाटर पंप देने के लिए रजामंद है। ये बात जाने कि हमारी एक टीम ने वहाँ कतारों को देखा और कुछ लोगों से बात की।
1: सैंपल में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के मुख्यालय में फोन पर और काउंटर पर भी सवालों की बौछार है। टीमें जैसे तैसे मांगों को पूरा करने और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने में लगी हैं। वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ उठाने के वास्ते सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए। 48 घंटों के अंदर अंदर ये कदम लागू किया गया पानी की कमी की समस्या के चलते।
2: Nous fait un numéro de à l'site à fin de vérification check and balance et tout de suite envoyer ça DBM.
1: रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद मीटर रीडर स्थल पर परीक्षण करने जाता है। मांग डीबीएम भेजी जाती है। 5 दिन लगेंगे। ये ऑनलाइन प्रणाली है जो शनिवार तक पूरी हुई, लेकिन 2-3 चीजें अभी भी बाकी हैं। कई लोग इसके बारे में जानते ही यहाँ आ पहुँचे। सुबह 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन कतार का अंत नजर भी नहीं आ रहा था।
3: Depuis qu'il est où là, Madame Denis?
4: C'est du matin. Vous respirez, moi, vous respirez coulé.
3: Pas de pense pour prendre un tank, tout ça là avant.
4: Ah, mais tu n'as qu'un tank, mon ramassé des vides de carreaux. Sans même, mon tank plastique là, là. Mais là, mon mythe, sans même.
1: लंबी कतार के बगल में बहती नदी मानो आग को हवा दे रही हो।
4: Au moins 200-300 jimoun devant nous. Tu n'as pas fait dire mon centre social, mon place côte.
1: कुछ लोग आगे से सोच कर खाने पीने का सामान भी साथ ले आए थे। देश भर के सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के दफ्तरों में पंजीकरण किया जा रहा है। रोजिल में दिन के दौरान मेज की जगह दीवारों ने ले ली। इसी के सहारे लोग खुद ही अपना फॉर्म भरने लगे। दो टैंक और एक पंप के लिए घंटों इंतजार। कतार के अंत में सूखे नल का नजारा फिर कभी न देखने वालों की उम्मीदें भी सूखने लगी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या सैकड़ों घरों में 2 टैंक भरने का पानी भी है या नहीं।
0: पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर इनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। माधवी जागोनाथ की रिपोर्ट पर यह विवरण।

0: कृषि उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संबद्ध पक्षों ने पानी की मौजूदा कमी से निपटने के लिए प्रस्तावित कदमों पर चर्चा की। साथ ही कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तरी क्षेत्र में खेती करने वाले लगभग 3,000 खेतीहर सूखे से प्रभावित हैं। प्लांटर्स रिफॉर्म एसोसिएशन के अध्यक्ष सलील रॉय बताते हैं, नदियों का पानी सीधे समंदर में जाता है, जाया होता है। कंटेनराइज्ड प्रेशराइज्ड फिल्टर डाल सकते हैं। गंभीर सूखा नहीं है, पानी जमा करने की समस्या है। आशा है ये समस्या जल्द सुलझ जाए। रुस्पेल शुगर स्टेट बोर्ड ने आवश्यकता पड़ने पर पानी की बोरिंग के लिए कुछ स्थलों की पहचान की है। शुगर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपनी जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का कहना है कि सब्जियों की कमी होने पर एक योजना तैयार है। उसके जनरल मैनेजर नवीन जयपाल सिंह बताते हैं, बीन्स, ककड़ी आदि हवाई जहाज से ला सकते हैं, बाकी समुद्री मार्ग से। हम तैयार हैं, सूखा हो या नहीं, दिसंबर जनवरी के लिए आयात योजना तैयार है, प्याज, आलू और लहसुन के लिए। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने सभी संबंधित पक्षों से आपसी सहयोग बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। वे बताते हैं, सब्जियों को लेकर समस्या नहीं है, बीज भी है, पशुपालकों के लिए पानी भी, लेकिन सोच समझ कर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ इलाकों में पानी तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमने वाटर रिसोर्सेज से संपर्क किया, हम चाहते हैं कि पानी का इस्तेमाल अच्छे से हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी भी साल के अंत में संभावित सूखे की स्थिति के लिए तैयार हैं। प्रशासन का कहना है कि गन्ने की फसल सूखे की स्थिति में भी काफी हद तक अच्छी होती है।
1: गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसीलिए सीईबी इस महीने से चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को जाया ना करें। बेल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। आज सुबह भारतीय नौसेना जहाज INS निर्देशक मॉरिशस पहुंचा। ये बहुत ही प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच 20 सालों का सहयोग है। और आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से जहाज हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में अपना काम शुरू कर रहा है। नीतुषा जिया की रिपोर्ट।
2: इस पड़ाव के साथ हाइड्रोग्राफी यानी जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच सहयोग के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो भले ही दिखाई नहीं देता लेकिन समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। INS निर्देशक ने बंदरगाह पर लंगर डाला है। निर्देशक का अर्थ है रास्ता दिखाने वाला। अब ये जहाज हमारे क्षेत्रीय समुद्री जल के बारे में अधिक से अधिक आंकड़े जुटाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इसकी मदद से मॉरिशस और रोड्रिग्स के बीच के समुद्री क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सहयोग मॉरिशस और भारत के बीच साल 2005 में तय एक समझौते का हिस्सा है। तब से भारतीय टीमें मॉरिशस की टीमों के साथ मिलकर देश की हाइड्रोग्राफी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। INS निर्देशक पहले ही अगालिगा द्वीप का दौरा कर चुका है। इस मिशन के तहत द्वीप का मैप तय किया गया था। इस जहाज की मदद से हम एक अध्ययन तैयार करेंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों द्वीपों के बीच कमर्शियल जहाजों के लिए किन किन

0: नेविगेशन रूट्स हैं यानी मॉरिशस और रोड्रीज के बीच। सर्वे के लिए ये भारत का सबसे बड़ा जहाज है। भारतीय नौसेना में वर्ष 2024 में शामिल हुआ INS निर्देशक 15 अक्टूबर से हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण का काम शुरू करेगा। ये सर्वेक्षण न केवल समुद्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद देगा बल्कि समुद्री नेविगेशन के लिए मौजूद खतरों की पहचान करने में भी सहायक होगा। दोनों देशों की कोशिशों के जरिए हमने नेविगेशन के लिए 13 पेपर मैप्स और 15 इलेक्ट्रॉनिक मैप्स तैयार किए जो भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक सेवाओं द्वारा प्रकाशित किए गए। हमने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज एक्ट का गठन किया है जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के जरिए मॉरिशस में हाइड्रोग्राफी के लिए कानून भी बिठाए गए हैं।
1: This legislation lays a foundation for a dedicated legal and institutional framework to support hydrographic activities in Mauritius.
0: लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसके बदलते स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक से अधिक आंकड़े जुटाना अब पहले से कई अधिक आवश्यक हो गया है।
2: सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि खार्तूम में सूडानी हिस्से में दरियाई नील के पास खान स्थलों को निशाना बनाया गया। रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया गया। मुसाफिरों के ठहरने के हॉल में आग लगी, एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी हुए। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई हैं और 308 लोग घायल हुए थे। विधिमा सिबुरन के साथ अन्य खबरें।
3: राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उस घोषणा के बावजूद जिसे उन्होंने ऊर्जा युद्ध विराम कहा था, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 3 क्षेत्रों में बिजली गुल होने की सूचना मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार की घोषणा पर पहले आश्चर्य व्यक्त किया और बाद में कहा कि अगर मॉस्को इसका पालन करता है तो कीव भी इसका समर्थन करेगा। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पोप लियो 14 ने घोषणा की है कि मेडिकल चेकअप के दौरान उनके फेफड़े में एक गांठ पाए जाने के बाद आने वाले दिनों में उनकी सर्जरी की जाएगी। 71 वर्षीय पोप ने कहा कि उनकी मेडिकल टीम का मानना है कि ऑपरेशन करना सही रहेगा और उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी है।
2: अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। मस्कोरिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंड है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह घने बादल होंगे। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगून के उस पार समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। और आज रात से समुद्र की हालत धीरे धीरे खराब होने लगेगी, इसी वजह से आज रात से दूर समुद्र में ना जाने की दरख्वास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:40 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:10 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुदोविक जोहंगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

Mosselman Sitaram, Henrietta Vakwami Basart Salke, 62 years old, Shri Rup Singh Sutrugan, Shri Rup Singh Sutrugan, जो गौतम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे और भूमि मंत्रालय में पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनके घर मोसलमान सीताराम अंगिता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। डॉक्टर इद्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री राजा सिवेन गंगेन, श्री राजा सिवेन गंगेन जो सिवेन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी बुध को 11 बजे इनकी पत्नी विनोदा गंगेन के घर डॉक्टर इड्रिस कुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 11 AM। आचाम लेन मोताइलोंग में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कमलावती बजन पैदाइशी नाम मीटू जो कमलावती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके बेटे सूरज बजन के घर आचाम लेन मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेव क्या की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। तागो स्ट्रीट रोशनुआ में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री तिमल सिंह लोबिन जो कुमार ऑसियन लाबोया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनके बेटे विशाल लोबिन के घर टैगो स्ट्रीट रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 1 रोतान लेन एवेन्यू बियातो कैथोबोन में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मायावंती मोनिया जो इंदू के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल ढाई बजे इनके घर रोतालेन एवेन्यू बेटो कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2:30 PM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री जयराज सुखवरिया जो विवेक के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी कविता सुखवरिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9 AM। गांधी रोड लालमाची में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लीलावती कोलीचन पैदाइशी नाम रामेश्वर की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 10 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मोगू में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अनिल रीगा जो पेट्रोल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी धनवंती रीगा के घर मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 9 AM। नंबर 1 20 डॉक्टर मोंप्ले रोड मुबासे में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बसंती चुकराना रायनन पैदाइशी नाम ओकाल जो संगीता के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 1 बजे इनके घर दुक्टो मोंप्ले रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है। Your news on MBC.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: जी हाँ दोस्तों, शाम के 7:06 हो चुके हैं। मंडे इवनिंग 12 अक्टूबर 2026। देखते ही देखते ये महीना भी धीरे धीरे करके निकल रहा है और दिन ऐसे ही निकल रहा है। चलिए सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल कूल सूदिंग म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है। एंड चलिए, हमारा और आपका साथ है रात्रि के 9 बजे तक। समय से परे कुछ ऐसी बातें हम करेंगे, समय से परे ऐसी दुनिया की ओर लेकर चलेंगे आपको, जिसको प्यार की दुनिया कहते हैं। और उधर लेकर चलेंगे तो वापस आने का मन नहीं होगा, इतनी गारंटी तो हम ज़रूर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने इस मंडे इवनिंग को स्पेंड कर रही हैं। ऑन 5499 1294 इज़ द मैजिकल नंबर जिस पर आप अपने प्यार भरे मैसेजेस भेज सकते हैं। और शो में चार चांद लगाने के लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट तो हमेशा चाहिए ही होता है, तो इस वजह से हम इंतज़ार करते रहेंगे आपके मैसेज का, और आप अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहे और बरसाते रहे। सो डोंट फॉरगेट, द मैजिकल नंबर इज 5499 1294। इफ यू हैविंग योर मील राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बन अपेची शुभाहार। और अगर आप काम पर हैं, आपको विश करेंगे बों कुहाज। ऐसे ही मेहनत से काम करते जाइए, और काम करते करते गुड म्यूजिक का साथ, इसका मजा ही कुछ और होता है।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: हर घर में हो सुकून, हर पल में हो एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस।
2: इस नवरात्रि हर प्रार्थना को बनाइए और भी खास विद विधि अगरबत्ती।
1: चाहे हो विधि अगरबत्ती की सूदिंग खुशबू, विधि धूप स्टिक्स की रिच फ्रेग्रेंस, विधि धूप कोन्स का ब्यूटीफुल अरोमा, या फिर विधि संब्रानी कप्स की ट्रेडिशनल वार्मथ, विधि इंसेंस स्टिक्स ब्रिंग्स पीस फ्रेशनेस एंड कम्फर्ट टू एवरी स्पेस।
2: इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर चले एक साथ विधि आरंभ करें दुर्गा माँ की।
3: शुभ नवरात्रि फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्लोरिस की तरफ से।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: नाजुक तो ये दिल होता है और इस नाजुक दिल को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लव का डोज तो हमेशा चाहिए ही चाहिए होता है। इसीलिए तो हम बार बार यहाँ पर आ जाते हैं आप लोगों का साधने के लिए और आपको ये भी बताने के लिए कि आवर लव इज़ गोइंग मच स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। एंड चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली हमारी प्यारी सी वर्षा लक्ष्मण के लिए ऑफ बिल वी मोहल, और कहती हैं कि आई वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर माई लिटिल प्रिंसेस जो आज एक साल की हो गई है। प्यारी सी हमारी राजकुमारी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे आपकी प्यारी सी परी को। बेस्ट विशेज फ्रॉम पापा विकेश, भैया हैं वायु एंड विहान, सभी लक्ष्मण फैमिली ऑफ बिल वी मोहल की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड चलिए हमारी तरफ से भी पर्सनली उनको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, और हमेशा ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और मम्मी पापा का नाम ऐसे ही वो रोशन करती रहे। एंड आई नो कि जब कोई प्यारी सी राजकुमारी घर में आती है ना, तो इनके पैरों के हट से ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी सफल हो गई है और पूरा घर रौनक से भर जाता है। तो चलिए ऐसे ही आपकी राजकुमारी को हम लंबी उम्र की प्रार्थना दे रहे हैं, वो जी हज़ारों साल। और वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे प्यारी सी परी को फ्रॉम मामा वर्षा। तो चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ, हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

किसी का सपना होता है कि जिंदगी में बस आगे बढ़ते रहना है, और किसी का सपना होता है कि बस जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ले। कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी सिचुएशन इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हम सिचुएशन को और भी सुलझने की बजाय उनको उलझते चले जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल टू नो एंड टू रियलाइज कि जिंदगी में जब चीज़ें दे डोंट वर्क द वे दैट वी प्लान, तो आपको बस ये करना है, आपको अपने लव डोज को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। और कभी भी आपके साथ किसी के साथ मीठी टकरार हो गई हो, स्पेशली विद दैट पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, तो बस उनको मनाने के लिए रूठने मनाने का सिलसिला बस जारी रखना है, और इसके बाद ट्रस्ट मी वो जो प्यार होता है ना वो थोड़ा और बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर। हाई टुडे आवर फ्रेंड सुनीता की लाडली बेटी विभा का बर्थडे है, बेस्ट विशेज फ्रॉम वेलनेस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ कौंदमास्क। एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना खासतौर से हम डेडिकेट करेंगे सीता गीता बोलू।

0: Mama from Chateau Benares, and किसी ने कहा can you please play मेरे बिना from Crook. We on our way back home from work. We really want to hear it. Thank you so much. चलिए अभी के लिए तो request के गाने नहीं चल रही हैं, but for sure the next gonna go out specially आपके नाम और तमाम हमारे listeners के नाम.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. चलिए वो इतना रहने हैं श्रेया घोषाल की आवाजों में ब्यूटीफुल सा ये गाना स्पेशली प्रकाश भट्टी जी ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम गीत बहुत ही प्यारी है दिव्या जी बारिश वाला गाना आपको बहुत ही अच्छा लगा तो चलिए ये गाना भी मुझे पूरा यकीन है आपको

0: घड़ी मिलाते चलिए रात्रि के 8 बज चुके हैं।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

इसको कहते हैं प्यार, जहां पर भी आप नजर घुमाओ बस अपने चाहने वाले को आप उस दिशा पर पाएंगे, एंड इसको प्यार कहते हैं जहां पर बंद आंखों से भी उनका दीदार हो जाता है और खुली आंखों से भी चारों तरफ बस वही नजर आते हैं। 8:08 हो चुके हैं मंडे इवनिंग 12 अक्टूबर 2026, जहां पर दिव्या का साथ है न्यू इवनिंग लाउंज, जहां पर हम और आप ऐसे ही साथ साथ हैं रात्रि के 9 बजे तक। आपके मैसेजेस के लिए दिल से आपको शुक्रिया, एंड यहाँ पर प्रीतम बिट्टू जी आपका मैसेज आया है आपके पीतों से, नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर योर वाइफ वर्षा हु इज वर्किंग राइट नाउ, और आप कहते हैं कि थैंक्स टू प्ले रोमांटिक सॉन्ग्स, चलिए भी के लिए तो रोमांटिक गीतों का कारवां चलता रहेगा टिल 9 PM, ऐसे ही साथ देते रहिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि इन गीतों को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा और प्यार हो जाएगा और आपका दिल भी थोड़ा और जोर से धड़क ही जाएगा। चलिए आपके मैसेजेस का भी इंतजार कर रही है टोल दोज जूस पार से

0: हमारा साथ दे रही हैं और आप थोड़ी सी हिचकिचा रही हैं, मैसेजेस भेजे ना भेजे क्या करें, आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, जो भी मन की बात है आप एक्सप्रेस कीजिए हमारे साथ, हम तो यहाँ पर दिल का हाल सुनने सुनाने के लिए ही आए हैं। सो वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
4: Radio Musti.

चलिए 8:23 मिनट एंड यहां पर इतना प्यार आपने बरसाया आपके मैसेज के जरिए, बस देखकर ही ये मन भराया, थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए. एंड आप कहते हैं कि एवरी वीकडे इज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बस आप शाइन करते रहते हैं लाइक अ शाइनिंग स्टार, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच. बस अगला गाना आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे टू नितेश रामदिकल एंड फॉर योर स्वीट मामा मीला रामदिकल टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो आपको जानते हैं और टू ऑल दोस्त जो रहते हैं मोताई ब्लॉश, थैंक यू सो मच. आपको भी नितेश हैप्पी नवरात्रि आपको.

0: भी जय माता दी हैं, ऐसे ही साथ देते रहिएगा। चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद इस वक्त काम कर रही है, और मे बी यू आर ड्राइविंग राइट नाउ, मे बी अभी आपका काम ख़त्म हो रहा है और घर वापस जा रही हैं, सो प्लीज़ आपसे कहेंगे ड्राइव सेफ एंड केयरफुली एंड स्टे म्यूजिकल विद रेडियो मस्ती।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: ब्यूटीफुल सा गाना माना कि हम यार नहीं, बस आप मानो तो हम बिल्कुल दोस्त हैं और इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, इस प्यार को ऐसे ही बार बार इंक्रीज करने के लिए ही हम लेकर आते हैं प्यार भरे गाने आप लोगों के लिए। 8:40 एंड अगर आप लोग इस वक्त घर पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो चलिए दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू, परिणीति चोपड़ा की आवाज़ में।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: जी हाँ दोस्तों, 8:55 होने को हैं। एंड चलिए इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू लव यू। कल हमारी और आपकी मुलाकात एक और खूबसूरत म्यूजिकल कारवां के लिए। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का Yes on RM2 Ladies and Gentlemen. ये है Late Night Grooves. और अकेले रहना और लोनली फील करना अलग अलग बातें हैं. कभी कभी अकेलेपन में भी कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को आप कैप्चर कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं. हेडफोन्स लगाओ, फेवरेट गाना आप सुनो, लाइट्स को डिम करो और बस अपनी थॉट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. मैं विकास आपके साथ रेडियो मस्ती पर लेट नाइट ग्रूव्स, आराम से अपने पेस पर गानों की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में आप सभी का स्वागत.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा आप ऐसा करते हैं कि पूरा दिन खत्म हुआ और उसके बाद बैठकर सोचते हैं कि आज के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, आपने टाइम पर क्या क्या किया जो करना था, अरे वर्कआउट किया कि नहीं, किसी को स्माइल वापस दी कि नहीं, घर का काम कंप्लीट किया या सिंपली एक डिफिकल्ट डे को सर्वाइव किया। अरे ये भी तो विन विन सिचुएशन है ना। जब आपको इतनी छोटी खुशियों में भी इतनी बड़ी खुशी दिखती है तो आप समझ लीजिए कि आप एक विनर हैं। सिर्फ बिग अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं करना, स्मॉल विन्स को भी अप्रिशिएट कीजिए, गले लगाइए और देखिए साहब एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और वही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगा।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: इस जिंदगी में न जाने कितने सारे लोग हमसे मिलते हैं। कुछ लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें कुछ सिखा कर जा पाए। हर एक दोस्ती हमेशा के लिए नहीं होती, हर एक रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, हर एक गुड बाय का मतलब फेलियर नहीं होता। कभी कभी पीस के लिए कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ता है। जो जाना चाहता है जाने दीजिए, जो आपका है वो रिस्पेक्ट के साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा, और जो आपका है वो वापस लौट कर आएगा।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Family का network होना बहुत जरूरी है. जी हाँ, family का network. जब हम छोटे थे तो parents हमारा हाथ पकड़ते थे, हमें guide करते थे, हमें इतनी सारी advice देते थे. उसी तरह अगर आज के ज़माने में जब सब कुछ बदल रहा है और parents धीरे-धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उन्हें भी तो हमारा साथ चाहिए, हमारा हाथ चाहिए. उनकी स्टोरीज हमने 100 times सुनी होंगी, फिर भी एक बार सुन लीजिए, एक और बार उनके साथ फोटो लीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. क्योंकि ये जो लम्हे ना जो आप उनके साथ बिता रहे हैं, ये एक दिन गोल्डन मोमेंट्स हो जाएंगे.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: अच्छा दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, या मिक्स था, या फिर किसी का इतना भी ठीक नहीं था। बॉस ने सुनाया, या फिर ट्रैफिक ने दिमाग में ट्रैफिक क्रिएट कर दिया। फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट हो गई, या फिर कोई प्लान फेल हो गया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन एक बुरे दिन का मतलब ये नहीं कि आपकी बुरी जिंदगी है। नो, कल एक नया दिन है। आज की रात जो कंट्रोल में नहीं है उसे रिलीज कीजिए और अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि शुरुआत करनी है ना कल एक बार फिर से, नए ढंग से, नए सिरे से।

होता ना कभी किसी सिचुएशन में आपकी जो अंदर की आवाज़ है वो आती है, मन की आवाज़। और वैसे तो हर किसी की एडवाइस हम सुनते हैं, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, कलीग्स की, सोशल मीडिया पर कुछ डाल दिया तो लोग इतने सारे कमेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर की आवाज़, मन की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, किस चीज़ से खुशी मिलती है, भाई हर आंसर आपको टाइप करने से नहीं मिलता, कुछ आंसर्स अंदर से आते हैं, सच मानिए।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: अच्छा, वक्त ऐसा है कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सुन रहे होंगे. कोई स्टूडेंट है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई रोड पर होगा, कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी, कोई घर संभाल रहा होगा और कोई बस अपने रूम में म्यूजिक सुन रहा होगा. डिफरेंट टाइम जोन्स, हर किसी की अपनी जिंदगी, हर किसी का अपना अपना एफर्ट. लेकिन म्यूजिक अगर आपको सपोर्ट देता है, एक हम सफर बनकर चलता है, तो इससे बड़ी और क्या. आप अकेले नहीं है भाई. AM to PM साथ देने का जो वादा किया है तो निभाएंगे भी.

0: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
1: आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंद्रनील ठाकुर। नील,
0: जानती हूँ
1: आप बेस्ट लॉयर हैं, आप मेरा केस लड़ो ना, वरना वरना माया के पापा गुनगुन को ले जाएंगे।
0: तो मैं क्या करूँ?
1: आप अपने बेटे को प्यार नहीं करते
0: क्या?
1: अगर आपके बेटे को कोई ले जाए तो आप बेस्ट लॉयर नहीं ढूंढेंगे?
0: मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती। नाउ प्लीज गो फ्रॉम हियर।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: एक बंद स्टूडियो में बैठकर ये जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं बैठकर गाने बनाते हैं, कॉम्पोजिशंस को सजाते हैं, लिरिक्स बिठाते हैं, उनको क्या पता कि कभी कभी ये जो गाने हैं किसी की जिंदगी का एक सहारा बन जाए, एक साथी बन जाए जो उसके साथ हमेशा चलता जाएगा। नहीं पता ना। इसी तरह कभी कभी आपकी कही हुई बात किसी के दिल में बैठकर उसको इंस्पिरेशन दे सकती है, उसको आगे बढ़ने का जज्बा दे सकती है। इसलिए अगली बारी आप किसी को बस जज करके कुछ कह दें, थोड़ा सोचिए और फिर बोलिए, जरूरी है।

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: देवियों सजनों, आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत चाहेंगे अभी के लिए, क्योंकि वक्त इतनी इजाजत देता है कि आज इस कार्यक्रम को हम यहाँ तक लेकर आए। फिर से जल्दी मिलते हैं, बस साथ देने का वादा कीजिए, और अगर आपने वादा कर लिया है तो हम भी आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। AM to PM रेडियो मस्ती पर, अभी था लेट नाइट ग्रुप्स।

0: की आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
1: जान तुम्हें तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 साल से इंपोर्टेड कार्स का बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ तो वैल्यू मेरी भी होगी नहीं?
2: अब तुम कहोगे तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ कूद जाओगे, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दोगे।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
2: पैसा, अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम पास

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो
1: दिस इज द फ्यूचर मैन.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: या चुप रहूं
1: ना,
0: दिल में मेरे आज क्या है?
1: क्या है?